मीडियम बीप 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को अब समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली

0: एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिस देश की मिट्टी में संस्कारों की खुशबू हो, जिसकी हवाओं में स्वतंत्रता की स्मृतियां हो और जिसकी धड़कनों में तिरंगे का सम्मान बसता हो, उस भारत भूमि को नमन। हमारा राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि उन भावनाओं से बनता है जो हमें एक दूसरे से अपनी मातृभूमि से जोड़ती हैं। देश के प्रति इसी अपनत्व और गौरव को स्वर देता हुआ प्रस्तुत है एक देशभक्ति गीत।

हर शुभ कार्य का प्रारंभ विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्मरण से होता है। वे बुद्धि, विवेक और मंगल के अधिष्ठाता हैं। उनकी कृपा से मन में आत्मविश्वास जागता है और जीवन की राह में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती है। प्रस्तुत है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना करता हुआ ये मधुर भजन।

आस्था का सबसे सुंदर स्वर वह है जिसमें मन पूर्ण समर्पण के साथ अपने आराध्य का स्मरण करें। भगवान शिव वैराग्य और करुणा का ऐसा अद्भुत संगम है जिनके चरणों में हर भक्त को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उनका स्मरण केवल पूजा नहीं बल्कि मन की निर्मलता और जीवन के संतुलन की साधना भी है। मां

वह शक्ति है जो बिना थके हर परिस्थिति में अपने बच्चों का संबल बनती है। उनकी दुआएं जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। दुनिया बदल जाए लेकिन माँ का प्रेम हमेशा वैसा ही रहता है, निश्चल, निस्वार्थ और अनंत। भगवान श्री विष्णु

सृष्टि के पालन करता है। जब भी धर्म पर संकट आया, उन्होंने विभिन्न अवतार लेकर मानवता की रक्षा की। उनका स्मरण मन में धैर्य, विश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन, आलेख नीरज सालवी का, वाचक स्वर आसिफ अली का।
1: प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक संतुलन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और अभूतपूर्व अवसरों का युग है। यह प्रतिस्पर्धा का ऐसा दौर है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आना चाहता है, युवा प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करना चाहता है, व्यापारी अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहता है और कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आगे बढ़ने की यह आकांक्षा स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा मनुष्य को कर्मठ, अनुशासित और प्रगतिशील बनाती है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य श्रेष्ठ बनने से हटकर दूसरों को पीछे छोड़ने तक सीमित हो जाता है। उस समय व्यक्ति की ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में नहीं बल्कि तुलना, ईर्ष्या और असुरक्षा में नष्ट होने लगती है। यही स्थिति मानसिक असंतुलन का कारण बनती है। आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। समाज ने सफलता को वेतन, पद, प्रतिष्ठा, महंगी गाड़ी, बड़ा घर और बाहरी उपलब्धियों तक सीमित कर दिया है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दूसरों की उपलब्धियों के आधार पर करने लगा है। जब तुलना जीवन का

0: रूप से युवाओं के मन में हीन भावना, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। मानसिक संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में स्वयं को संयमित और सकारात्मक बनाए रखना। से आज हम बच्चों को गणित, विज्ञान और तकनीक तो सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन की चुनौतियों का सामना करना नहीं सिखा रहे। उन्हें यह नहीं बताया जाता कि असफलता भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि असफलता किसी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण नहीं होती, बल्कि उसे और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय है, हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल करियर का नाम नहीं है, जीवन में परिवार है, मित्र है, स्वास्थ्य है, समाज है और स्वयं का आत्मिक विकास भी है। यदि इन सब की उपेक्षा करके केवल उपलब्धियों के पीछे भागेंगे तो सफलता मिलने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है आत्म स्वीकृति। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, परिस्थिति और गति अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। यदि आज हम कल से बेहतर हैं तो यही वास्तविक प्रगति है। तीसरा उपाय है समय का संतुलित उपयोग। संतुलित भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचार और स्वस्थ वातावरण आवश्यक है। चौथा उपाय है संवाद। जब मन में तनाव हो तो उसे अपने भीतर दबाकर ना रखें। अपने माता पिता, गुरु, मित्र या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से खुलकर बातें करें। भारतीय संस्कृति सदैव मानसिक संतुलन को जीवन का आधार मानती रही है। हर परिस्थिति में मन का संतुलित रहना ही योग है। यही संदेश आज के प्रतिस्पर्धी युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमें यह समझना होगा कि सफलता जीवन का लक्ष्य अवश्य हो सकती है, लेकिन मानसिक शांति उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। कि जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में केवल वही व्यक्ति अंत तक प्रसन्न और सफल रह सकता है जो अपनी गति, अपने लक्ष्य और अपने मन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, लेकिन हमारी शांति ना छीन ले। सफलता हमें ऊंचाई दे, लेकिन विनम्रता ना छीन ले। और जीवन की दौड़ में हम इतने व्यस्त ना हो जाएं कि स्वयं से ही दूर हो जाएं।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख नीरज सालवी का और वाचक सुर आसिफ अली का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। विषय है बारिश में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें, वाचक स्वर डॉक्टर के एस किरण का।
2: किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर के एस किरण है। आज अभी बरसात का मौसम है किसान भाइयों, और ये देखा जा रहा है कि किसान भाइयों स्वस्थ पौधशाला सब्जियों की पौध किस प्रकार से अपन तैयार करें, जिससे कि अपन अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और हमारी लागत भी उसमें कम हो सके। तो इसके लिए जैसे देखा है कि तीन प्रकार के अपने मौसम होते हैं, उसमें क्यारियों का बड़ा महत्व है और किस प्रकार से अपन उनमें पौध तैयार कर सकते हैं। यदि खरीफ का अपने जो मौसम चल रहा है उसमें हमेशा किसान भाई ऊँची उठी हुई क्यारियों में पौध तैयार करना चाहिए। यदि बारिश थोड़ा सा समय यदि निकल जाए, उस समय के बाद अपन उठी क्यारियाँ यदि अपने पास पानी पास में है तो उस समय इस प्रकार की क्यारियों का मैं पौध तैयार करना चाहिए सब्जियों का। यदि थोड़ा सा यदि और लगता है कि ठंड का जैसे मौसम आ रहा है तो समतल सतह पर भी अपन सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। गर्मियों के समय में जहाँ यदि लगता है कि जहाँ लू आने की संभावना है तो ये क्यारियों को अपन जमीन के अंदर थोड़ा सा 6 इंच नीचे की तरफ तैयार करते हैं, जिससे कि लू और धूप से इसे बचाया जा सकता है। खरीफ में जो अपन विभिन्न फसलों की नर्सरी डालते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जैसे टमाटर और बैंगन और मिर्च के पौधे अपने को तैयार करना है तो उसके लिए 5 से 6 सप्ताह की आवश्यकता अपने को पड़ती है पौध तैयार करने में। उसके लिए ये देखा जाता है किसान भाइयों कि ज़्यादातर पानी के कारण ये पौध जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ऊंची उठी क्यारी जैसे कि अपन ने बात की, वो क्यारी का जो ऊपर की सतह है 4 इंच की सतह है उसमें रेत, केंचुए की खाद, गोबर की खाद इस प्रकार से मिश्रण तैयार।

0: करके उसके ऊपर की 4 इंच की परत को अपन बना सकते हैं। ये क्यारी का जो आकार है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि अपने को कृषि क्रियाएं करने में आसानी हो। और इस प्रकार की क्यारियों की लंबाई अपनी जो आपके पास स्थान है उसके स्थान से अपन रख सकते हैं। यदि लगता है कि तेज़ बारिश का समय है तो इन क्यारियों को अपन नेट या पॉलीथीन के माध्यम से भी ढक सकते हैं। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और प्याज की यदि अपने को नर्सरी तैयार करना है तो ये इनमें करीबन 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। मतलब थोड़ा सा टमाटर, मिर्च और बैंगन से 1 सप्ताह अधिक इनमें लगता है। तो इस तरह से देखेंगे किसान भाइयों, इनकी बीज की मात्रा भी अपने को इन क्यारियों के और फसल के प्रति हेक्टर संख्या के हिसाब से अपने को निर्धारित करना आवश्यक है। जैसे यदि टमाटर, बैंगन और मिर्च और शिमला मिर्च, फूलगोभी के यदि अपने को तैयार करना है तो जो सामान्य उन्नत प्रजातियाँ हैं उनमें तो 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता अपने को पड़ती है। लेकिन यदि ये संकर किस्में हैं तो इनमें 150 से 200 ग्राम में ही अपने लिए बीज की पर्याप्त आवश्यकता हो जाती है। ये बीज की मात्रा ये हमेशा पौध संख्या और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी पर निर्भर करती है। यदि मान के चलो अपने को 40x40 सेंटीमीटर पर यदि पौध तैयार करना है तो 62,500 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। यदि 45x45 सेंटीमीटर पर यदि अपने को पौधरोपण का कार्य करना है तो 49,000 के लगभग इसमें पौधों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आज के समय में प्रो ट्रे, प्लग ट्रे, इसके माध्यम से भी अपन पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे कि स्वस्थ पौधे यदि पौधशाला में सब्जियों के चाहिए तो इनमें कोकोपेट, वर्मी लाइट इनका 3:1 के अनुपात में मिश्रण तैयार करके प्रो ट्रे में अपन स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर के एस किरार और विषय था बारिश में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मनस गान, गायक स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम से चौहान की। 7:35 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 पर सुबह सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभा के कवि हैं सुंदरलाल जोशी, दिनेश दबे, कैलाश सोनी और हरचरण सिंह चावला। सुबह 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं हर सिंह बोरलिया और साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए नागेश्वर काथा को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनाएंगे गिरीश वझालवर का गायन, राग है बसंत मुखारी। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनिए दिन में 12:00, 12:30 पर सुनिए संग्रहालय से। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, आप सुनेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर जानकारी, आधुनिक समाज में रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप इस पर जानकारी, और साथ ही होगी रक्षाबंधन और परिवार में भावनात्मक जुड़ाव जरूरी इस विषय पर चर्चा। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का प्रोग्राम। 2:00 सुनिए फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा चित्रपट संगीत। शाम 5:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी। आज का क्रम होगा साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर सुनिए सुगम संगीत, कलाकार है नागेश्वर काथा। शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको सुनाएंगे हीरा सिंह बुरलिया और साथियों के गाए लोकगीत। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:00 सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे। रात्रि 8:15 पर सुनिए प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर हम लेकर आएंगे चित्रगीत और 9:30 फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम होगा मन भावन। 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित जसराज का गायन, राग है जोग। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः। अथ वार्ताः। नेपालदेशे अकस्मादागतेन भीषण जलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीय नागरिकाणां अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः। नेपालदेशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89300 यावत् जाता। सहस्रशः लुप्तानां जनानां अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेषु 90+200 भारतीयाः अपि सन्ति। तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15+100 लुप्त जनानां सूचना प्रदत्ता। तेषु 30+ देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति। तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानां आपद

0: आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं सप्तचत्वारिंशत् तन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: राष्ट्रियावत् प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ती क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः, तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुंदेला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति, तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तर प्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कंद नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 14.5 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतं अद्य पर्यन्तं 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेह बन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातृणां हस्तमणि बन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः आरोग्यस्य सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का

0: दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से यह व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
7: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
7: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
7: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोता हम आपको बता दें, सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसके लिए आप हमसे बात करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और आपसे बातें करने का भी, और साथ ही आपकी पसंद के गीत सुनवाने का भी। तो ज़रूर फ़ोन करिए और हमसे बातें करिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। इस समय अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देशभर में रक्षाबंधन का पर्व, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हुए, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता

0: व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक जाएंगे और 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को लेकर भारत की प्राथमिकताएं रखेंगे। देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के साथ साथ परिवार, मित्रों और समाज में स्नेह, सम्मान और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्राचीन और अभिन्न हिस्सा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से रक्षाबंधन पर भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की गई। इसे पुजारी परिवार की महिलाओं ने तैयार किया है। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोरपंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र तक ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े अभियान की जरूरत बताई और कहा यह भी पहचानना जरूरी है कि बच्चा किस खेल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। वहीं प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मूंग खरीदी फसल बीमा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए पहले से स्वीकृत मात्रा के अलावा 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदने की अनुमति दी है। इससे राज्य में मूंग की कुल स्वीकृत खरीदी 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 5,33,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीदी की जा चुकी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का कल भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रात समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में अधोसंरचना, साफ सफाई, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों की उपस्थिति 95% तक पहुंची है। पिछले 2 वर्षों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 125 करोड़ विद्यार्थियों को 696 करोड़ रुपये ऑनलाइन दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जन विश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। अभियान के दौरान सभी जिलों में सरकारी आवासीय स्कूल आश्रम और छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश के वन विभाग ने विदिशा जिले के काकपुर क्षेत्र को काकपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की है। करीब 53 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में वन्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाएगा। काकपुर क्षेत्र बेतवा और बाही नदियों के बीच स्थित है और यहाँ मौजूद प्राचीन तालाब बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करता है। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवा स्थान हासिल किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टेल वीन में खेले गए पांचवें छठे स्थान के मुकाबले में भारत की ओर से इशिका ने एक और नवनीत कौर ने दो गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने 1974 के बाद विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और टीम को पांचवा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत देश के हर बैंक रहित वयस्क को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 3,16,514 करोड़ रूपये से अधिक जमा है। इनमें करीब 78% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में है, जबकि 56% से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खातों में औसत जमा राशि बढ़कर 5,356 रुपए हो गई है। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीधी कटनी अनूपपुर बालाघाट सिवनी छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने टिमरनी प्रधानमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। शिवपुरी सर्किल जेल में आज रक्षाबंधन पर बंदियों से खुली मुलाकात होगी। खंडवा में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर लगाया जाएगा। मंदसौर में कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। मंडला के बीजाडांडी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कल शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देशभर में रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान हमारे सभी सुनने वालों को रक्षाबंधन, श्रावणी और संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का एक प्रमुख और पवित्र सनातन त्योहार है। प्रति वर्ष ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे धार्मिक और पौराणिक महत्व छिपा हुआ है और जिसकी कई कथाएं हैं, जिसमें द्रौपदी और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथा है, एक कथा माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है और एक कथा इंद्राणी और इंद्र से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। आज इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाएंगी और आरती उतार कर दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र या राखी बांधेंगी और भाइयों को स्वादिष्ट मिठाइयां भी खिलाई जाएंगी। वाकई में ये पर्व बहनों द्वारा भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना के उद्देश्य से मनाया जाता है और भाई अपनी बहनों की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, उन्हें उपहार या भेंट देते हैं। रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं है, यह समाज में आपसी भाईचारे, सुरक्षा की भावना और नारी के सम्मान व संरक्षण का संदेश देता है।

0: हम सभी रक्षाबंधन के साथ ही श्रावणी पर्व और संस्कृत दिवस मनाने जा रहे हैं। संस्कृत न केवल एक भाषा है अपितु हमारी सनातन संस्कृति की संवाहक भी है और श्रावणी पर्व एवं संस्कृत एक दूसरे का पर्याय है जिनके महत्व को समझना हमारी नैतिक आवश्यकता है। तो आइए जुड़ते हैं इस विषय में उज्जैन से जाने माने शिक्षाविद से
1: डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। हमारा देश भारत वर्ष पर्वों और उत्सवों का देश है। विभिन्न पर्व यहाँ मनाए जाते हैं और उन सब के पीछे कोई न कोई प्रबल हेतु या कारण होता है। श्रावणी या श्रावणी पूर्णिमा का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आयोजित होता है। हमारे देश में जो पारंपरिक 12 महीनों के नाम हैं, वे नाम भी बहुत सार्थक नाम हैं और इन नामों का निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि जिस मास में चंद्रमा का योग जिस नक्षत्र के साथ में होता है उसके आधार पर उस महीने का नामकरण होता है। जैसे चित्रा नक्षत्र से युक्त चंद्रमा हो तो चैत्र महीना होता है या विशाखा नक्षत्र से युक्त हो तो वैशाख महीना होता है, उसी तरह से श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा वाला जो मास होता है वह श्रावण मास कहलाता है और श्रावण महीने की वह पूर्णिमा तिथि श्रावणी या श्रावणी पूर्णिमा कहलाती। यह श्रावणी पूर्णिमा का जो पर्व है यह अत्यंत प्राचीन है और वैदिक काल से इसका

आयोजन होता रहा है। श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। इसका एक मुख्य आधार यह भी है कि प्राचीन काल में भारत में नए शिक्षा सत्र का आरंभ श्रावणी पूर्णिमा से होता था। श्रावणी पूर्णिमा का यह पर्व ऋषियों के पूजन और स्मरण का दिन है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों का अत्यंत उच्च और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। श्रावणी में उपाकर्म के अंतर्गत प्रायश्चित के रूप में दशविध स्नान, नया यज्ञोपवीत धारण करना, ऋषियों का पूजन और ऋषियों का तर्पण भी सम्मिलित होता है। इस दिन ऋषियों की वंश परंपरा और गोत्र प्रवर्तक के रूप में उनका पावन स्मरण भी किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के अंतर्गत सभी चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ही छह वेदांगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद के प्रारंभिक अंशों का उच्चारण करने की परंपरा है। श्रावणी का यह पर्व ऋषि परंपरा के स्मरण और उनके प्रति सम्मान या श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने का पर्व है। संस्कृत को देव भाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा गया है, संस्कृतम नाम दैवी वाक् अनवाख्याता महर्षिभिः, अर्थात संस्कृत वह दैवी वाणी है जिसका अनवाख्यान महर्षियों ने किया है। इस देववाणी की आराधना करने वाले ऋषियों को समर्पित श्रावणी पर्व के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इस आयोजन को विस्तार दिया गया है और संस्कृत दिवस के साथ ही अब संस्कृत सप्ताह का आयोजन भी किया जाने लगा है। संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह मनाने का मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा और उसके साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। संस्कृत भाषा की प्राचीनता और वैज्ञानिकता सर्वमान्य है। वैश्विक स्तर पर ऋग्वेद को संसार का सर्वप्रथम ग्रंथ मानकर आदर दिया गया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत न केवल संसार की प्राचीनतम भाषा है, अपितु संस्कृत का व्याकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। महात्मा गांधी ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि संस्कृत के अध्ययन के बिना कोई भी सच्चा भारतीय और सच्चा विद्वान नहीं बन सकता। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। मैक्स मूलर ने संस्कृत को विश्व की महानतम भाषा कहा था। संस्कृत का विशाल साहित्य वैदिक वाङ्मय से आरंभ होता है। वैदिक वाङ्मय में संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित हैं। इसके बाद आगे चलकर पुराणों की रचना हुई। ऋषियों ने जिस साहित्य का निर्माण किया वह आर्ष साहित्य कहलाया। रामायण और महाभारत भी इसी आर्ष साहित्य के प्रमुख उदाहरण हैं और ये दोनों महाकाव्य उपजीव्य महाकाव्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य यह कि रामायण और महाभारत के अनेक कथानकों का आधार लेकर उनके अनेक प्रसंगों को आधार बनाकर बाद में भी बहुत विशाल साहित्य लिखा गया है। श्रावणी पर्व और संस्कृत दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम अपनी गौरवपूर्ण ऋषि परंपरा का स्मरण करें और संस्कृत भाषा एवं संस्कृत साहित्य के अध्ययन से स्वयं को लाभान्वित और कृतार्थ करें।

है वो, उसके अलावा एक हमारे वहाँ संगम बनती है काजू और गुलकंद के साथ में। दूसरी फिर ड्राई फ्रूट्स में काफी रेंज होती है, और चूंकि हम मावे की मिठाई, हमको हमारे जो मावा हम बाजार से नहीं खरीदते हैं, तकरीबन तकरीबन जो दूध होता है हमारा करीब 32 टेस्ट करते हैं, 7 क्वालिटी के और बाकी अडल्ट्रेटर्स होते हैं। हमको हमारे पैरामीटर का दूध उतना मिल नहीं पाता है। हम फेस्टिवल के दौरान मावे की मिठाइयाँ बनाना बंद कर देते हैं। हमारा जो मेन फोकस है देसी घी की मिठाइयाँ और बाकी जो है ड्राई फ्रूट्स की मिठाई। हमारे वहाँ भवरीलाल के द्वारा जो भी चीनी वापरी जाती है ना, वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड की होती है। 100% हम फार्मा ग्रेड की शक्कर ही वापरते हैं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। हमारे वहाँ जो देसी घी आता है वो भी ब्रांडेड की COA रिपोर्ट होती है, हर सामान की सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस वो भी लेते हैं, और उसको हमारी लैब में भी क्रॉस चेक किया जाता है। मैम हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह की कमी नहीं रहे। हमने हमारा जो एक स्लोगन बनाया हुआ हमारे लिए भवरीलाल, वो स्वच्छ और स्वस्थ। और पहले हमारे घर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, वो सब बनाती थी, अब समय के अभाव में और कुछ ये भी सेवा हम सब साथी मिठाई वालों को मिल गई है कि घर का उनका बोझ कम कर और घर की तरह बिल्कुल दें, जिससे कि उनको वो कमी महसूस नहीं हो जिस तरह से वो बनाया करते थे घर के लोग।

और श्रोताओं, कल यानी 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। भारतीय हॉकी को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 में दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद करना और उन्हें सम्मान देना इस खेल का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों, फिटनेस और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। देश के युवाओं को खेल को करियर और जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है और समाज में मोटापा, गतिहीन जीवन शैली और उससे जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन MPCA का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार को ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2,94,00,000 रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और ICC मैच रेफरी जगावल श्रीनाथ तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। MPCA की ओर से हर साल विभिन्न आयु वर्ग और श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस बार गत सत्र में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में प्रदेश के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर, MPCA पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में माधव राव सिंधिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रशांत मेहता और CT सरवटे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आनंद पटेल को दिया गया। दोनों को

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा, इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुनहरे पल।

सुनहरी पल के सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और माजिदा खान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ रिश्ते नाम की मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते किसी वादे के मोहताज नहीं होते, बस एक धागा होता है उसमें, बनी होती है पूरी दुनिया। बचपन की शरारतें, छोटी छोटी नोकझोंक, ढेर सारा प्यार और एक दूसरे के साथ होने का भरोसा, आज उसी खूबसूरत रिश्ते का दिन है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी बहन की शिकायतें हैं तो कभी भाई की शरारतें, कभी रूठना है तो कभी मनाना, और इन सब से बढ़कर है एक दूसरे के लिए दिल में बेशुमार अपनापन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
9: श्रोताओं, आज के इस खास मौके पर हम याद कर रहे हैं भाई बहन के प्यारे से रिश्ते को। कलाई पर बंधा धागा कोई साधारण धागा नहीं, ये बचपन की यादों का एक सिलसिला है। ये रूठने मनाने का रिश्ता है, ये बिना कहे एक दूसरे को समझ लेने का रिश्ता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता, हम बात कर रहे थे खास मौके रक्षाबंधन की। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना और अगले ही पल फिर से एक हो जाना, बचपन के वो कितने ही खूबसूरत दिन थे, जहाँ शिकायतें तो बहुत थी मगर प्यार उससे भी ज़्यादा। दोस्तों, वक्त बदला, हम बड़े हो गए, जिंदगी की मसरूफियत में शायद रोज़ बात नहीं हो पाती, पर दिल के किसी कोने में वो बचपन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता आज भी महकता है फूलों की तरह।

श्रोताओं, बाजार रेशमी धागों से सज चुके हैं, मिठाइयों की खुशबू हवाओं में घुलने लगी हैं और बहनों के चेहरों की रोशनी बता रही है कि साल का सबसे खूबसूरत दिन आ गया है। जी हाँ, अटूट विश्वास और बेइंतहा मोहब्बत का त्यौहार रक्षाबंधन। ये धागा सिर्फ रेशम का नहीं है, इसमें बंधी है बहन की ढेर सारी दुआएं और भाई का वो खामोश वादा जो कहता है, तो फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रेशम के इन धागों में बहन का प्यार है, भाई की कलाई पर सजा खुशियों का संसार है।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़

0: प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष

0: इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी।
1: महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परम्परा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महान दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुँचाई जाएगी, जहाँ विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रूपये प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षा बंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माँ सरस्वती की आराधना आदरणीय हरसन सिंह चावला जी ने की, और माँ की मेहर जब मिल जाती है, माँ शारदे ने हर विधा में मानव को वो चीज़ें दी है कि मानव तरक्की के हर रास्ते इन शब्दों से खोल लेता है, और आज हम उन्हीं शब्दों की साधना के लिए बैठे हैं। और शब्द की ताकत बहुत बड़ी होती है। चार पंक्तियां देखेगा कि शब्द किसी की नहीं धरोहर, शब्द किसी की नहीं धरोहर नादा ज्ञानी बन सकता है, शब्द किसी की नहीं धरोहर नादा ज्ञानी बन सकता है, मुफलिस को कमजोर न समझो एक दिन दानी बन सकता है, और वक्त और किस्मत क्या लिखे, वक्त और किस्मत क्या लिखे, कब क्या हो ये किसे है पता, कभी कभी तो एक शब्द भी एक कहानी लिख सकता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: माँ शारदे की आराधना के लिए जो साधक अपने अपने समय अपनी कोशिश अपना ज्ञान अपने उस करता है, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वंदना को, और माँ सरस्वती निवेदन करता हूँ कि ये वाणी जो आपको मिली है ये सदैव जो है बनाए रखे। और मैं सबसे पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ, हमारे नागदा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, बरसों से आप एक आयाम लेकर नागदा में अपनी जगह बनाकर हैं, और अब बहुत अच्छा लेखन है आपका, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका ये लेखन जो है ये आकाशवाणी के उन सभी श्रोताओं को जो आज हमें सुन रहे हैं वो सुने कि आपकी वाणी में आपके गीतों में आपके शब्दों में क्या जादू है। तो मैं इन शब्दों से आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुंदरलाल जोशी सूरज जी आए और वे आज का अपना जो है काव्य पाठ करें।
1: धन्यवाद सुनील जी। आकाशवाणी के सारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, और एक वर्षा का मौसम चल रहा है लेकिन वर्षा का गीत आप सामने प्रस्तुत करता हूँ।
2: स्वागत है।
0: स्वागत।
1: नदियों ने तट छोड़ दिए पास न कोई आओ रे, चम चम चम के गगन बिजुरिया सावधान हो जाओ रे,
2: वाह वाह वाह,
1: चम चम चम के गगन बिजुरिया।

0: प्रथम आगमन था
1: बहुत
0: बारिश
1: अच्छा। अरे
0: का,
1: वाह,
0: धरती ने श्रृंगार
1: बहुत
0: किया,
1: बढ़िया। अरे बहुत सही।
0: लेकर आंचल में बूंदों को वर्षा का
1: वाह,
0: सत्कार
1: अरे
0: किया।
1: वाह।

0: बहुत बढ़िया।
1: तट टूटे हैं तालाबों के, जन की जान बचाओ रे।
2: अरे वाह।
1: चम चम चम के गगन बिजुलिया सावधान हो।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: अरे वाह वाह वाह।
1: दाता सब कुछ लुटा रहा था, याचक खुश थे पानी से।
2: अरे वाह।
1: मेघ बरसने लगे गगन से, नदियाँ खुश थी पानी से।
2: अरे वाह वाह जोशी जी वाह।
1: जहाँ जहाँ तक नजरे जाती,
2: अच्छा है,
1: बस पानी ही पानी है।
2: अरे वाह।
1: पेड़ नहीं दिखते हैं मुझको,
0: वाह,
1: धरा हुई वीरानी है।
2: अरे वाह वाह।
1: नावें चलती है सड़कों पर, बस्तिक तनिक दिखाओ रे।
0: वाह वाह वाह।
1: चम चम चम के गगन बिजुरिया सावधान हो जाओ।
0: क्या बात
2: है। अरे वाह।
1: अंतिम मंदिर में क्या दो अंतिम बंदे
2: स्वागत है, स्वागत।
1: नया पलटी जल प्लावन में, नजर न धरती आती थी, चढ़े पेड़ पर जान बचाई डूबी।

बाढ़ नदी में भीषण आई, वर्षा की मनमानी थी, जिधर जिधर मैं नजरें डालूं सुंदर।

0: क्या बात है।
1: चम चम चमके गगन बिजुरिया सावधान हो जाओ रे। अंतिम मंत्र बंद करता हूँ।
2: स्वागत है।
1: देखिए मानवीकरण करने का प्रयास किया मैंने। श्रृंगार का पुट देखिए इसमें कि जब नदियों का यौवन मछला। जब नदियों का यौवन।

0: खाना पीना बंद हुआ है।
1: क्या बात है,
0: पानी की विकरालता देखिए। खाना पीना बंद हुआ है, छत पर डेरा डाले हैं।

0: चमके गगन बिजुरिया सावधान हो जाओ।
1: क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: सावधान हो जाओ रे। धन्यवाद सर ईश्वर।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, एक शानदार गीत, सावधान हो जा रे चमचम जय जय गजन बिजुरिया, क्या गीत है। और आपकी अद्भुत लेखनी सदैव मैंने, हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, आपका लेखन उच्च स्तरीय होता है। और चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है तो रक्षाबंधन पर्व पर चार पंक्तियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पर्व रक्षाबंधन पर, कि पर्व सुहाना रक्षाबंधन, पर्व सुहाना रक्षाबंधन इसकी महिमा न्यारी है। पर्व सुहाना रक्षाबंधन इसकी महिमा न्यारी है, बहनों की मुस्कान खिले तो
2: वाह
1: खिलती हर फुलवारी है। पर्व सुहाना रक्षाबंधन इसकी महिमा न्यारी है, बहनों की मुस्कान खिले तो खिलती हर फुलवारी है। और एक यही त्योहार अनूठा भाई बहनों का प्यारा, एक यही त्योहार अनूठा भाई बहनों का प्यारा, निश्चल प्रीत भरे इस दिन पर सारी खुशियां वारी।
3: अरे वाह वाह वाह,
1: सावन भोले शंकर की आराधना के अंदर जब आदमी का मन गदगद हो जाता है, ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व कहीं ना कहीं हमारे दिलों में खुशियों का एक वैसी बरसात करता है जो आनंदित कर देती है। तो मैं इसी कड़ी में हमारे अगले कवि आदरणीय दिनेश दवे जी जो इंदौर से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के इस अवसर पर आपके शब्दों के पिटारे में जो शानदार रचनाएं हैं वो यहां पर पेश करें। दिनेश दवे जी।
2: धन्यवाद कैलाश भैया, बहुत अच्छा संचालन है आपका, और समस्त इंदौर के आकाशवाणी के श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और आज की जो काव्य गोष्ठी है, सावन और राखी का त्यौहार और अगस्त महा त्यौहारों का पर्व कहा जाता महा, तो मैं कुछ पंक्तियों से आपको एक मुक्तक से जोड़ना चाहूंगा।
3: स्वागत है।
2: धन्यवाद। जब सावन की बूंदे खत लिखने लगे, जब सावन की बूंदे खत लिखने लगे, आवारा बादल कुछ कुछ कहने लगे, आवारा बादल
3: कुछ
2: कुछ कुछ कहने लगे, मन भावन सी भीगी ओले चुनरी जमी।
0: क्या बात
2: है। मन भावन सी भीगी ओले चुनरी जमी, अंबर को तब धरती प्यारी लगने लगे, अंबर को तब धरती प्यारी लगने लगे, जब सावन की बूंदे खत लिखने लगे।
1: बढ़िया बढ़िया।
2: एक और मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ, समस्त श्रोताओं का भी ध्यान चाहूंगा। रंगों को तुम सावन कर दो, रंगों को तुम सावन कर दो, प्रिय मुझको पावन रंग कर दो,
3: अरे
2: मुझको पावन रंग कर दो, डूबा हूँ इस कदर प्यार में, डूबा हूँ इस कदर प्यार में, चाहत को मन भावन रंग कर दो, चाहत को।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात,
2: चाहत को मन भावन रंग कर दो,
1: बहुत बढ़िया।
2: एक और मुक्तक कैलाश भाई,
1: स्वागत
3: स्वागत है।
2: मन भीग रहा है आज बारिश में, मन भीग रहा है आज बारिश में, चाहा प्यारा संसार ख्वाहिश में, चाहा प्यारा संसार ख्वाहिश में, सावन ने जादू किया उन पर, सावन ने जादू किया उन पर, कहते हुए मीठे बोल गुजारिश में, कहते
3: हुए
1: मीठे
2: बोल की श्रृंखला थी। अब मैं एक गीतिका की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगा।
3: जो
2: जी जी, अधरों पर अभिवादन लिखकर आई भोर,
0: अच्छा।
2: अधरों पर अभिवादन लिखकर आई भोर, नजरों में मन भावन लिखकर आई भोर, अधरों पर अभिवादन लिखकर आई भोर, बरसा जमकर जब जब सावन ये खूब, बरसा जम जम कर जब जब सावन ये खूब, दामन पर तब पावन लिख कर आई भोर, दामन पर तब पावन लिख कर आई भोर, सूरज निकला आज कहती किरणे दिल की बात।
1: क्या बात है।
2: सूरज निकला कहती किरणे दिल की बात, बाहों पर फिर यौवन लिख कर आई भोर, यौवन
1: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत
3: बहुत
1: बढ़िया। निवेदन एक बार फिर सुनाइए, मजा आएगा।
2: सूरज निकला कहती किरणें दिल की बात, सूरज निकला कहती किरणें दिल की बात, भावों पर फिर यौवन लिखकर आई भोर, भावों पर
0: सब
2: यौवन लिखकर आई भोर, बिजली कड़के गरजे बादल छाए घनघोर, बिजली कड़के गरजे बादल छाए घनघोर, मानो दिल पर धड़कन लिखकर आई वो, मानो दिल पर धड़कन लिखकर आई वो, बूंदे प्यारी लगती, बूंदे प्यारी लगती मन को लिखता देव, बूंदे प्यारी लगती मन को लिखता देव, मेघों पर लो सावन लिख कर आई भोर, मेघों पर लो सावन लिख कर आई।
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा, शानदार मजा आ गया सर।
2: एक मैं दोहा पढ़ना चाहूंगा।
1: स्वागत है, स्वागत।
2: सावन से ही जुड़ा हुआ है,
1: कोई बात।
2: सावन अगन लगा गया,
1: सावन अगन लगा गया,
2: अगन लगा गया, धूप ले रही जान,
1: क्या बात है, सावन अगन लगा गया,
2: धूप ले रही जान, सूरज घर नाराज हो,
1: ओहो
2: सूरज घर नाराज हो, कौन रखेगा ध्यान।
1: आए आए आए, फिर से क्या बात, फिर से।
2: सावन अगन लगा गया, सावन अगन लगा गया, धूप ले रही जान, सूरज घर नाराज हो, कौन रखेगा ध्यान,
1: क्या बात है,
2: कौन रखेगा ध्यान।
1: बहुत बढ़िया।
2: और जैसा कि आपको पता है कि राखी का पर्व है, तो मेरा एक मुक्तक राखी पर मैं
1: स्वागत स्वागत स्वागत है सर।
2: भाई ने बड़े प्यार से बहन की तरफ बड़ाई कलाई, बहन ने बड़े प्यार से बहन की तरफ बड़ाई कलाई, बहन ने बांधी राखी प्यार से और खिलाई मिठाई।
1: अरे क्या बात है,
2: बहन ने बांधी राखी और प्यार से खिलाई मिठाई।
3: भाई
2: यस, बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहन का प्यार ऐसा होता है,
0: दिनी
2: है वो तो। भाई करे कामना तू हंसती रहे खुश रहे सदा बहन, भाई करे कामना तू हंसती रहे खुश रहे सदा बहन, तेरी मुस्कुराहट में ही ये तो भाइयों के मर्जों की दवाई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: भाइयों की,
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, आनंद आ गया।
2: एक छोटा छंद मुक्त रचना, दो पंक्तियां, ज्यादा लंबी नहीं लेके।
1: स्वागत स्वागत
2: है ना,
1: स्वागत।
2: सावन प्यारे लगते हो, सावन प्यारे लगते हो, बहुत भाते हो, कभी बहुत तेज बरसते हो, भिगा देते हो तन बदन मन सब भीगता, कभी तुम फुहार बनकर बरसते हो, गुदगुदाते हो, फुहार जब पूरे शरीर को आहिस्ता आहिस्ता स्पर्श करती है, ये पानी की नहीं अमृत की बूंदे महसूस होती है,
1: क्या बात?
2: नव चेतना नव संवेदना जगा देते हो सावन, सावन तुम प्यारे हो, प्रिय हो, अति प्रिय हो, जब बरसते तेज यूं लगता किस्मत छप्पर फाड़ करके आ गई है, जब सावन तुम फुहार बनकर छूते हो यूं लगता किस्तों में खुशियां देना चाहते हो, शायद खुशियां समा न पाए, सावन तुम कभी धीमे कभी तेज बरसते रहना, प्रिय मेरे सावन
1: वा, वा, वा,
2: तुम
1: वा,
2: बरसते रहना। धन्यवाद सभी, कैलाश भैया सभी मेरे साथियों को प्रणाम, धन्यवाद।
1: बहुत उत्कृष्ट मुक्तक और गीतिका दिनेश देवे जी ने सुनाई।
3: देखिए ये पवित्र महीना जहाँ भाई बहनों का त्यौहार सावन का महीना, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 15 अगस्त भी इसी महीने में आया है, और 15 अगस्त जो है वो हमारे देश की आज़ादी का पर्व है, सबसे बड़ा तो वही है। मेरी विदा दोहा है, कुछ दो चार दोहे सुना कर मैं 15 अगस्त पे गीत सुनाना चाहूँगा।
1: सर आपके दोहे बहुत जबरदस्त है, मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता जो है वो सभी अच्छे सारे दोहे जो आपके पूरे देश भर में लोग सुनते हैं वो आज इस आकाशवाणी के द्वारा श्रोता को मैं सुनाने जाता हूँ, आप सुनाएं सर। आज का दिन आपके ही नाम है सर।

0: क्या बात।
1: सबकी नैया पार करो मेरे दीन
0: क्या बात है, क्या
1: दयाल।
0: बात है, क्या
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह,
0: बहुत अच्छा।
1: सबकी नैया पार करो मेरे दीन
0: पहले ही दुआ, आप दुआ हमारे श्रोताओं के लिए आपने क्या दुआ की है, मजा आ गया सर।
1: विपदाओं के सामने घुटने कभी न टेके,
0: क्या बात है,
1: विपदाओं के
0: बहुत
1: सामने
0: अच्छा।
1: घुटने कभी न टेक, राह बंद हो एक
0: क्या
1: तो
0: बात,
1: खुलती देख
0: क्या
1: अनेक।
0: बात है, क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह वाह
0: है,
1: वाह,
0: खुलती
1: राह
0: देखने, क्या बात है, क्या बात,
1: निर्भय घूमे भेड़िए,
0: वाह,
1: हिरणी है भयभीत,
2: क्या बात,
1: बस्ती में भी आ
2: नरे वाह,
1: गई जंगल
2: ए सिरित,
1: जैसी
2: क्या बात है,
0: वाह
2: बहुत
0: वाह
2: बड़े
0: वाह।
2: बड़े बड़े बड़े।
0: चलो जी, मैं एक बार और सुनना चाहूंगा ये फिर से।
1: निर्भय घूमे भेड़िए, हिरणी है भयभीत, बस्ती में भी आ गई जंगल
2: देखो,
1: जैसी।
2: आंसुर मुस्कान वाला बाबा जी आपका बहुत बढ़िया दोहा है, मैं सुनना चाहूंगा श्रोताओं के लिए।
1: कितना मुश्किल है यहाँ अपनों की पहचान,
2: वाह
1: दोनों झूठे हैं
0: वाह, क्या बात है,
1: यहाँ, आंसू
0: आंसू,
1: और
0: क्या
1: मुस्कान।
0: बात है, क्या
1: वाह
0: बात, बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह,
0: बहुत बढ़िया,
2: बहुत
0: बहुत
2: बढ़िया
0: बढ़िया,
2: भाई, बहुत
0: बहुत
2: बढ़िया।
0: बढ़िया।
1: नारी को जिसने सदा
0: आहा,
1: समझा एक
0: ओहो,
1: शरीर, वो क्या जानेगा भला उसके मन
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: की
0: वाह, वो क्या जानेगा भला उसके मन की पीर, क्या गजब, बहुत बढ़िया, बहुत
1: उन्हें
0: बढ़िया।
1: आँखों का चाहिए
0: आहा,
1: होना अब
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: उपचार, दर्द पराया देख कर बहे न जिस में
0: वाह, बहुत बढ़िया,
1: धार,
0: बहुत अच्छा,
1: सागर तेरे प्रेम का
0: वाह,
1: ये कैसा

0: बोल रहे हैं।
1: नदियां बहती आ रही
0: ये
1: मिलने की है आस। अब 15 अगस्त इसी महीने में आया है, तो अगर उस माँ की महिमा का गान ना करें तो
2: स्वागत है,
1: मेरे को लगता है कि ये गोष्ठी हमारी अधूरी सी
0: बिल्कुल
1: रहेगी।
0: सही
2: स्वागत
0: कहा
2: है,
0: आपने,
2: स्वागत है, स्वागत है।
1: मैं माँ की, उस भारत माँ की आराधना करना चाहता हूँ, उस हिंदुस्तान की आराधना करना चाहता
2: स्वागत
1: हूँ।
2: है, स्वागत है।
1: साधु संतों की धराये, साधु संतों की धराये, सबसे निराली शान
2: अरे
1: है, सबसे सुंदर और मनमोहक मेरा हिंदुस्तान
2: क्या
1: है,
2: बात है, क्या बात है।
1: सबसे सुंदर और
2: सुंदर
1: मनमोहक
2: मनमोहक
1: मेरा
2: मेरा
1: हिंदुस्तान
2: हिंदुस्तान।
1: है, त्याग तपस्या गुण है इसके, बलिदान की बलिहारी है, जान दे देते हंस हंस कर, अद्भुत इससे यारी है, समरसता।

0: का सम्मान है, सबसे सुंदर और मनमोहक प्यारा
1: हिंदुस्तान है,
0: सबसे सुंदर और मनमोहक। इसका एक अंतरा जो बहुत मैंने तसद्दस से लिखा है, मैं वो जरूर सुनाना चाहूँगा। युद्ध हल नहीं होता है, शांति हमको प्यारी है। युद्ध हल नहीं होता है, शांति हमको प्यारी है। हर हाल में हमने इससे निभाई अपनी यारी है।

0: प्यारा हिंदुस्तान है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: सुंदर और मनमोहक
1: अभी तक
0: हिंदुस्तान है। अब देखिए हमारे बीच एक शेष है और मैं जानता हूँ वही विशेष हैं। हमारे बीच कैलाश सोनी, जिन्होंने अपना नगर का नाम, अपने परिवार का नाम और हम जैसे छोटे छोटे साहित्यकारों का नाम पूरे देश में आपने उठाया है। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय कैलाश जी को निवेदन करता हूँ कि वे आए।
1: एक मिनट के लिए मैं सोनी जी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर में आपने काव्य पाठ किया है, वाहवा पर टीवी पर आपका प्रोग्राम हुआ है और इसलिए मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ आपके सम्मान में और फिर आप अपनी कविता सुनाएं। कि सार्थक साधना रही आपकी,
2: वाह
1: सार्थक साधना रही आपकी, दुनिया में नाम कमाया है, गीत कविता और शायरी में अंगद सा पैर जमाया है। गीत कविता और शायरी में अंगद सा पैर जमाया है, माँ सरस्वती की कृपा आप पर जमकर बरसे आठों आम, और जब भी कलम चली है आपकी बस गीत राष्ट्र का गाया है। मैं दीपक के साथ भाई सोनी जी अनुरोध करता हूँ कि वे आए अपना काव्य पाठ।
2: धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। और मैं कैलाश सोनी सार्थक नागदा उज्जैन से, और आप लोगों ने इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई कि मैं गदगद हो गया, क्या सुनाऊं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इतनी अच्छी रचनाओं के बाद माँ शारदा की एक स्वतंत्र चार पंक्तियां, उन्होंने अभी देशभक्ति की बात की तो मैं चार पंक्ति, जो कि अगस्त का महीना है, कि प्रीत को साकार करना सीख लो।
3: वाह।
2: प्रीत को साकार करना सीख लो, इस धरा से प्यार करना सीख लो, और बिन धरा क्या मोल है संसार में, बिन धरा क्या मोल है संसार में, हिंद की जयकार करना सीख लो।
0: अरे वाह वाह वाह।
2: और चार पंक्तियां और देखिएगा कि मन का संतोष सबसे बड़ी चीज है, कि मन में अगर संतोष नहीं तो खुशियां फीकी लगती है। मैं अपने आकाशवाणी के श्रोताओं से एक निवेदन कर रहा हूं चार पंक्तियों में, और ये पंक्तियां अगर आप संदेश के रूप में ग्रहण करेंगे तो मजा आएगा। कि मन में अगर संतोष नहीं तो खुशियां फीकी लगती है, स्वाद बदल जाता जुबान का, शक्कर तीखी लगती है, और अपने मन पर काबू रखना जिस मानव ने सीख लिया, अपने मन पर काबू रखना जिस मानव ने सीख लिया, सच कहता हूँ उसको तीखी मिर्ची मीठी लगती है। जीवन में संतोष सबसे बड़ी चीज है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है समय। तो मैं समय पे एक छोटी सी रचना आकाशवाणी के हमारे श्रोताओं के लिए।
3: स्वागत है, स्वागत है।
2: कि समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, बख्शे नहीं किसी को ये वक्त बेरहम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, समय ही कीमती है जीवन की पहली शिक्षा, समय ही कीमती है जीवन की पहली शिक्षा, कीमत करो समय की ये है अनमोल दीक्षा, पहुँचाए आसमां पे पहुँचाए आसमां पे, समय में इतना दम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, बख्शे नहीं किसी को ये वक्त बेरहम है। अच्छा देखिएगा, इंसान नहीं मैं भगवान की भी बात कर रहा हूँ, कि राम और रहीम पर भी ये वक्त बुरा आया, इस वक्त ने इंसान क्या खुदा को भी सताया, राम और रहीम पर भी ये वक्त बुरा आया, इस वक्त ने इंसान क्या क्या खुदा को भी सताया, तूफान का रुख बदल दे इतना ये सक्षम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, बख्शे नहीं किसी को ये वक्त बेरहम, खुशियों में बीते जीवन तब वक्त लगे प्यारा, कब राह चलते गम से हो सामना तुम्हारा, गम और खुशी का करता ये वक्त समागम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है। और श्रोताओं से एक निवेदन के एक बार मिलता जीवन एक बार खिलती बगिया, एक बार मिलता जीवन एक बार खिलती बगिया, जो समय के साथ चलता माने उसे ये दुनिया, चलते रहो नुको नहीं ये वक्त का धर्म है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, बख्शे नहीं किसी को ये वक्त बेरहम है, वो जानो समय की भाषा जीवन में रखो आशा, जानो समय की भाषा, जीवन में रखो आशा, जो मोल जाने वक्त का, मिले न फिर निराशा। सार्थक ये वक्त सुन लो, सार्थक ये वक्त सुन लो, दुनिया में सर्वोत्तम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है, बख्शे किस नहीं किसी को ये वक्त बेरहम है, समय के साथ चलना सबसे बड़ा कर्म है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश देवे जी इंदौर से, मैं आपका स्वागत, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अर्जन जी चावला जी जो नागदा से हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। और आदरणीय सुनला जोशी जी, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। और मैं कैलाश सोनी सार्थक नागदा से, आपने हमारे हम लोगों को जो अवसर दिया सुना, उसके लिए मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। सावन की और रक्षाबंधन की सबको बधाइयाँ,
0: शुभकामनाएं। आकाशवाणी की कार्यकर्ताओं को भी दियो।

अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभा के कवि थे सुंदरलाल जोशी, दिनेश दवे, कैलाश सोनी और हरचरण सिंह चावला। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं हीरा सिंह बोरलिया और साथी।

0: आप सुन रहे थे हीरा सिंह पुरलिया और साथियों के स्वर में ये मालवी लोकगीत।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे हीरा सिंह बोरलिया और साथी। लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार है नागेश्वर काथा।

आप सुन रहे थे नागेश्वर गाथा के स्वर में ये पारंपरिक भजन। तबला संगत सचिन भोसले का और वायलिन पर कमल कामले थे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज कलाकार थे नागेश्वर काथा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए गिरीश वझलवरकर का गायन राखे बसंत मुखारी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गिरीश वजहलवर का गायन, राग था बसंत मुखारी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 10 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

आज मोरे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास। गुना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्रमिकों और रोजगार की। गुना जिले में श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए डिजिटल लेबर चौक ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार योग्य श्रमिक तलाश सकेंगे। निर्माण, कृषि और घरेलू काम सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस पर पंजीयन करा सकेंगे। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में गुना जिले के 60 श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 1,33,00,000 रूपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई है। यह सहायता असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनी है। अब बात किसानों की। गुना जिले में ई विकास प्रणाली 2.0 के जरिए ई टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था जारी है। किसानों को उनकी बोई गई फसल के अनुसार यूरिया, TSP, NPK और SSP उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान स्वयं एवं CAC सेंटर और खाद वितरण केंद्र के जरिए ई टोकन बुक कर सकते हैं। कृषक कल्याण की इस कड़ी में गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभराज की धनिया को जल्द GI टैग मिलने की उम्मीद है। अब बात महिला सशक्तिकरण की। लाडली बहना योजना के तहत गुना जिले की 2,27,114 बहनों के खातों में 39,13,00,000 रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। इसमें नियमित किस्त के साथ रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राशि का अंतरण किया। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरोन में जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेला लगाया गया। मेले में 7 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 311 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 192 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ जबकि 164 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। सामाजिक समरसता की दिशा में गुना जिले में गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू हुई है। 21 अगस्त से 10 सितंबर तक जिले के विभिन्न मार्गों पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसके जरिए समानता, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुना जिले से रामेश्वरम की यात्रा 7 से 12 सितम्बर तक प्रस्तावित है। यात्रा में जिले से 196 यात्री और 4 अनुरक्षक शामिल होंगे। इच्छुक लोग 1 सितंबर तक संबंधित नगर पालिका या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगस्त और सितंबर महीने का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जा रहा है। इसका वितरण 31 अगस्त तक किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों पर इसकी जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। खाद्यान्न लेते समय उपभोक्ताओं को 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में जल जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। गुना की पूरी राजस्व सीमा का अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। हैजा, पेचिश, पीलिया और मस्तिष्क ज्वर जैसे रोगों की रोकथाम के लिए संयुक्त दल बनाया गया है। यह दल जांच, निगरानी और जरूरी कार्रवाई करेगा। अब बात गुना की बारिश की। 1 जून से 27 अगस्त तक जिले में औसतन 788.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य

0: बारिश का करीब 75% है। गुना जिले में आज रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख और लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन कल भुजरिया पर्व भी उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत गुना जिले के मकसूदनगढ़ में कल 29 अगस्त को जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। नागरिक अपने आवेदन और जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर समस्याओं के निराकरण का लाभ ले सकते हैं। और अंत में स्वतंत्रता दिवस की बात, गुना में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और गरिमा के साथ मनाया गया। लाल परेड ग्राउंड पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले के विकास कार्यों उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तक का भी वितरण किया गया। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर शेख महजबी अलमाज का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और माजिदा खान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रोग्राम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं और जुड़िए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं छोट लाइन से कौन बात कर रहे हैं?
1: आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: आपको भी नमस्कार और गुड मॉर्निंग। बताएं कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, किशोर कुमार की नगरी से मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, खंडवा से।
0: यूनुस खत्री जी बात कर रहे हैं
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में और आपका पहला फोन कॉल्स लगा है, बड़ी खुशी की बात है।
1: हम तो हमेशा खुशी रहते, लगे तो भी खुश है, नहीं लगे तो
0: भी। देखिए,
1: मैंने दो दो महीने भी नहीं लगता है
0: जी जी जी,
1: दो चार दिन में भी लग जाता है, जब लगा पत्र भी शामिल होते तो भी खुश है
0: जी,
1: तो भी खुश है।
0: नहीं नहीं, पत्र हम बराबर आपके शामिल होते हैं जी।
1: हमने 47 साल में यही पाया है
0: जी जी जी, बिल्कुल। एक सेटिस्फेक्शन होना तो बहुत बड़ी बात है और आपसे सीखना चाहिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये चीज
1: जी। हम तो कभी शिकायत 43 साल में ना करते हैं
0: जी।
1: उसमें देखो क्या है, अपना ही प्रोग्राम है।
0: बिल्कुल
1: कल
0: बिल्कुल,
1: दो बार भी लग गया, चार बार भी लग गया, 10 दिन 15 दिन 2 महीने
0: जी जी
1: करते, ऐसा नहीं इसकी बड़ी शिकायत करें, हमारे तो लगते ही
0: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है।
1: मेहनत से होती है, मेहनत करो तो फल मिलता है।
0: बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हर श्रोता फोन लगाता है जी।
1: मजदूरी करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा तो खाएंगे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप।
1: फरमाता है कि भाई मैं तो दूंगा लेकिन अपने को भी हाथ से देना पड़ेगा,
0: आपको कर्तव्य करना होगा। बिल्कुल
1: थोड़ी होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल, कर्तव्य करने से ही फल मिलता है जी।
1: बहुत अच्छा लगा है
0: जी,
1: हमारा दिल खुश हो गया।
0: धन्यवाद जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी शायद आपसे पहली बार ही बात हो रही है यूनुस जी।
1: पहली बार हो रही
0: जी, बिल्कुल मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप किशोर जी की नगरी से बात कर रहे हैं सुनकर और भी खुशी हो रही है। और बताएं कौन सा गीत जी?
1: बस किशोर कुमार साहब की आवाज में सुनना है मुझे, स्वतंत्र फिल्म का गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा
0: जी। जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे किशोर जी की आवाज में जी।
1: जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, फोन लगे या न लगे, पत्र शामिल नहीं हो या हो ना हो, लेकिन प्रोग्राम को सुनना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आप जैसे खुश दिल लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है और खुश मिजाज रहिए, बिल्कुल खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर जी।
1: हम तो यही बोलते हैं कि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर खुश रहे
0: जी,
1: मस्त रहे, स्वस्थ रहे और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे।
0: बिल्कुल, और यही शुभकामनाएं है हमारी भी आप सभी श्रोताओं के लिए और हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। लीजिए सुनिए।
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया।

0: श्रोताओं, हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: हेलो,
3: जय माता जी।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी।
3: मैं आपसे बात, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंत में लगभग।
0: जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं पूरन जी?
3: यस सर।
0: हाँ जी, और बताएं कैसे हैं जी?
3: बढ़िया हूँ। आप और पूरी हमारी टीम को रक्षाबंधन की पावन अवसर की हार्दिक शुभकामना मैडम।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
3: मैडम? इसी अवसर, क्योंकि आज पावन अवसर का दिन है, भाई बहन का।

0: का दिन है तो उसी पर एक गाना है कमल की कसम
1: जी। हाँ हाँ, चंदा रे मेरे भैया से कहना, बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। लीजिए सुनिए चंबल की कसम फिल्म का ये गीत जो आपने पसंद किया है।
0: थैंक यू मैडम, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो।
7: हाँ नमस्कार मैडम।
6: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
7: मैं ग्राम बालोदा लखा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
6: जी जी, कन्हैया लाल प्रजापति जी।
7: हाँ जी जी जी।
6: हाँ जी,
7: हाँ, आपको रक्षाबंधन की शुभकामना हमारी ओर से।
6: हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं आप?
7: हाँ अभी, हाँ वो क्या भी 12-1 बजे मनाएंगे।

0: और क्या।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी, परिवार के साथ मनाना किसी भी त्योहार को बहुत अच्छा लगता है जी।
0: हाँ जी।
1: और आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म रेशम की डोरी का वो सुना दीजिए। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, ये वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज के साथ साथ इस आवाज को मिलाइए और सुनिए रेडियो पर अपनी पसंद का गीत जी।
0: आपको
1: मैं माजिदा खान बात कर रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, आपके पत्र हमें मिलते रहते हैं और
0: जी, हाँ।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: हाँ ओके ओके धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते
1: हेलो
0: स्वागत है आपका। जी जी अनिल भंडारे जी, बिल्कुल हम आपको पहचान गए हैं। और
1: रक्षाबंधन की आपको और आपका पूरा कन्या परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने इस मौके पर हमें फोन किया उसके लिए भी धन्यवाद।
1: आज का दिन भाई बहन के लिए बहुत महत्व रखता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: जिसके भाई बहन आज को आज मिलते हैं, उनको जुदा करने के लिए, उनका बंधन तोड़ने के लिए आज तक कोई नहीं आया है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: ये भाई कहीं भी हो, बहन कहीं हो, तो इस दिन मिलने भाई से जरूर आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो एक मजबूत रिश्ता है जी।
1: कलर पर राखी बांधता है, उसका आशीर्वाद देता है
0: जी,
1: उसको शुभ, उसको रक्षा करने का संकल्प भी देता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: उसको गिफ्ट में उपहार देता है, बस एक काम हुआ आज के जमाने में।
0: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं इस बंधन से। ये धागे का केवल बंधन नहीं होता, बल्कि भावनाओं का बंधन होता है।
1: बिल्कुल सही। पर एक बात है कि यदि आप बहन भाई नहीं मिल रहे
0: जी,
1: तो बहन अपना चंदा के द्वारा संदेशा देकर

0: भाई को कामना करते हुए बुलाते रहते हैं, ये देखा गया अक्सर हमने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जी चम्बल की कसम का गीत है ना, चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहुत ही खूबसूरत गीत है और उसमें यही संदेश दिया गया है जी।
0: आज वही गीत सुनना था मेरे को आज।
1: जी जी जी,
0: लेकिन वो बदल बन चुका तो मैं छोटी बहन का ले लिया।
1: जी जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही वो किसी श्रोता ने हमारे पसंद किया था। हम आपको छोटी बहन फिल्म का गीत सुनवा देते हैं।
0: और सुनो, इस गाने में नंदा बल्ला चांदी रहमान की भूमिका है।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: आपको म्यूजिक है, शैलेंद्र का गीत है लिखा हुआ, यादगार गीत है।
1: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप आपको पुरानी फिल्मों की तो बहुत जानकारी है, मैंने देखा है और सुना भी, तो हाँ। मैं आपको बिल्कुल सुनवाती हूँ छोटी बहन फिल्म का गीत।
0: ठीक है, धन्यवाद
1: धन्यवाद,
0: हमारे परिवार की ओर से भी आपको बधाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपके परिवार तक बधाई पहुँचाना चाहते हैं जी।
0: नाम लेना चाहूंगा।
1: बिल्कुल लीजिए जी,
0: भंडारे समता तीसरा निशा भंडारे।
1: बिल्कुल, सभी को शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की, और लीजिए आपकी पसंद का गीत सुनिए। धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: मैम, मैं राजेंद्र सोलंकी, ग्राम उदयपुरा, पोस्ट नागरी, जिला खरगोन से, पश्चिम निमार से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी जी जी, जिला खरगोन से बात कर रहे हैं।
1: सारी शुभकामनाएं
0: आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से। और बताएं,
1: मुझे तिरंगा फिल्म का ऐसे समझना, रेशम की
0: डोर
1: डोर भैया वाला गीत सुना दीजिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है
0: जी।
1: और हमारे यहाँ आज से करीबन 10 दिन तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है ग्राम नागिरी में।
0: अच्छा जी,
1: मतलब पड़वा, तीज, दूज, त्योहार, अष्टमी, नवमी के रोज
0: अच्छा
1: विशेष कार्यक्रम होते हैं।
0: अच्छा,
1: और यहाँ पे संत बंधु बाबा की जीवित समाधि हमारे ग्राम नागिरी में, तो नवमी के रोज यहाँ पे बहुत बड़ा मेला, संतान मेला लगता है।
0: अच्छा,
1: यहाँ से दूर दूर प्रांत से जो जिनको बच्चे नहीं होते वो फल खाने, आम के फल मिलता है मैम
0: जी,
1: तो बहुत बढ़ाई होती है यहाँ पे, बहुत बड़ी मान्यता है मैम।
0: बहुत अच्छी बात है जी जी जी, बहुत एक अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं तक पहुंचा दी अपने माध्यम से।
1: और इसके लिए मैम आज से ही पंजीयन चालू हो गए हैं, आप पंजीयन को जो भी करवाना चाहते हैं हमारे इस पे नंबर पर करवा सकते हैं।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: निःशुल्क आम के फल मतलब बाबा के समाधि के ऊपर मिलते हैं और उससे संतान की प्राप्ति होती है।
0: जी जी जी बहुत अच्छी बात है ये। और अभी आपने जो गीत पसंद किया है, तिरंगा फिल्म का किया है ना?
1: जी मैम,
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं। और रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं आज,
1: जी मैम मना रहे हैं ना, बोला
0: क्या
1: ना
0: कुछ
1: आज
0: कर
1: से
0: रहे हैं?
1: हमारे यहाँ नवमी तक चलेगा हर घर में।
0: आज क्या विशेष है?
1: हाँ आज विशेष है, और नवमी के रोज तो बहुत पूर्ण मैसेज रहता है मैम,
0: जी
1: अष्टमी
0: जी
1: नवमी
0: जी
1: पश्चिम निमाड़।
0: चलिए, तो मिठाइयाँ तैयार हो गई आपकी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत जो आपने
1: जी मैम,
0: पसंद किया है।
1: ठीक, धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।
2: वो भी आज के दिन

0: जी
1: फूलों का तारों का सबका गंगा।
0: जी बहुत ही अच्छा गीत है, और
1: जी
0: आपके गांव
1: आपको
0: में
1: आधा वर्जी
0: आपकी जगह
1: बोलना
0: पे।
1: था,
0: जी जी जी बोले।
1: जी आधा वर्जी बोलना था आपको, भूल रहा था मैं क्या कहना है।
0: थैंक यू आना मर्जी, हम बिल्कुल आपका मतलब सिरोधार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और आप कैसे, आपके गांव में, आपके जहां आप रह रहे हैं श्रीनगर में, वहां रक्षाबंधन का त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है?
1: बड़ी धूमधाम चल रही है, खरीदारी कर रही हैं लड़कियां, महिलाएं
0: जी
1: राखी नवे छांटती हैं, अपने मन की लेती हैं सब मिठाई वगैरह।
0: हाँ जी मिठाई की दुकानों में भी बहुत भीड़ है, और राखी की दुकानों में, है ना?
1: जी मेरी दुकान भी चल जाती है, मैं वो रखा हूँ सोहन पापड़ी रखा हूँ, वो
0: जी
1: भी
0: जी
1: बिकती
0: जी
1: है मेहंदी वगैरह।
0: हाँ, सही बात है, ये सब चीजें तो
1: और आप कैसे
0: रक्षाबंधन के
1: हैं?
0: त्योहार की रौनक होती है ना।
1: जी
0: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम
1: जी
0: आपको सुनवा रहे
1: आपका
0: हैं।
1: दिन शुभ हो,
0: बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद आपको।
1: आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भगवान अच्छा करें।
0: जी, धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी शुभकामनाओं के साथ ये गीत सुनिए जो आपने पसंद किया है।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ मैडम
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं अमित खातरकर, सारणी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: अमित जी बात कर रहे हैं सारणी जिला बैतूल से।
1: जी जी
0: और क्या हाल चाल है अमित जी आपके?
1: बस ठीक है मैडम जी।
0: हाँ जी, और अभी क्या तैयारी हो रही है?
1: हाँ अभी तैयारियाँ चल रही हैं।
0: हाँ जी,
1: तिथि जी जी
0: तिथि के हिसाब से राखी बांधेंगे यूँ?
1: जी जी जी
0: तो किस समय में अब राखी बांधने का है आपका?
1: राखी सुबह से शाम तक चलता है, वैसे कोई उसका ये अपना है ही नहीं, जैसे समय
0: हाँ
1: मिल
0: जी,
1: जाए उसके
0: तो
1: साथ।
0: अभी आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: गीत में मुझे सुनना है राखी फिल्म है और गीत के बोल है राखी धागों का त्योहार।
0: जी जी जी बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत है, हम आपको
1: जी
0: ज़रूर सुनवाएंगे।
1: जी
0: और बताएं आपके बारे में, क्या करते हैं?
1: जी मैडम, कंपनी में काम करते हैं, शिफ्ट में काम चलता है।
0: जी, और केवल घर पर ही रेडियो सुनते हैं कि अपने काम के दौरान भी?
1: नहीं ये तो आजकल मोबाइल ऐप से तो आसान हो गया है
0: जी,
1: जी, साथ में ही रहता है, कहीं भी ऑन कर लीजिए, सुन लीजिए। जी।
0: बिल्कुल, चलिए ठीक है, हम आपकी पसंद का सुनवाते हैं फिल्म राखी का गीत जो आपने पसंद किया है।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते, स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: तहसील नागदा, जिला उज्जैन से बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी?
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: जी। और बताना चाहेंगे, मेरी बहन मेरे घर पे आई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी जी जी
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो उनके साथ में जो बच्चे आए हैं ना उनके, तो मतलब काफी उत्साह रह रहा बच्चों में, और एक दूसरे से मिलकर मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, बच्चों की चहल पहल और बहन का आना, ये तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और
1: जी, जैसे कि त्यौहार होते हैं ना, तो
0: जी
1: त्यौहार के

0: हाँ नहीं, हम बहुत कामकाजी लोग होते हैं तो मतलब मिलना भी नहीं होता है, केवल फोन पे बात होती है, लेकिन जब ऐसे त्योहार आते हैं ना तो बहन या भाई या जो भी मिलना जुलना हो जाता है ना तो काफी अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहन भाई का ये
0: जी
1: त्यौहार तो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है सारी बहनों को। मायके जाने का एक बहुत उत्साह होता है और बहुत
0: हाँ
1: खुशी अंदर से
0: जी
1: महसूस करती हैं वो।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपको बताओ मेरी दीदी यहाँ आई ना तो मेरे बिंदिया है ना बड़ी वाली, उसकी मम्मी उसके भाई के वहाँ चली गई, बोला कि मैं भी अपने भाई के पास जाऊंगी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी पत्नी भी अपने भाई के पास पहुँचे और आपकी बहन भी आपके घर पर आए,
0: जी
1: दोनों का ही ये हो जाए, रक्षाबंधन का
0: मैंने कहा कि
1: त्यौहार
0: आप
1: मनाया
0: भी
1: जाए।
0: रक्षाबंधन मना के आ जाए, तो 2 दिन वो रुकेंगे दीदी को तो फिर दोनों साथ में रह लेना।
1: हाँ बिल्कुल, मेल मिलाप तो होते रहना चाहिए परिवार में और
0: जी
1: परिवार को समय निकालना चाहिए। इन त्योहारों के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, अन्यथा आप खुद ही बता रहे हैं ये चीज़ कि हम हमेशा बिजी होते हैं अपने अपने कामों में। एक त्योहार है जिसमें हम बैठ करके बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से
0: जी
1: बात करना, क्योंकि हम
0: और
1: समय यूं नहीं निकाल पाते ज़िंदगी से। जी
0: जी बिल्कुल, और एक और बात है, हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है गांव
1: जी
0: में,
1: जी
0: जो बहुत ही मतलब चमत्कारी हनुमान मंदिर है। एक बार अगर दर्शन हो जाए ना बालाजी के, तो मतलब उनकी जो भी मनोकामना होती है सिद्ध होती है, पूरी होती है।
1: बहुत अच्छी बात है, ये तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपके यहाँ पहुँचे
0: जी बिल्कुल,
1: और
0: और आपको पता
1: श्रोताओं को
0: बहुत
1: भी। जी
0: हनुमान जी के जो मंदिर है ना, यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
1: जी जी आपने जिस तरह का सिद्ध स्थान बताया है ये तो सभी
0: जी
1: करना चाहेंगे दर्शन। और अभी आप तो कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
0: काजल फिल्म का सुनवा दीजिएगा, मेरे
1: जी
0: भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन।
1: बिल्कुल, मैं आपको सुनवा रही हूँ एक गीत
0: जी
1: फिल्म काजल से। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, ओके बाय।

0: जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रहे हैं। और मैम आपको और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और तनुश्री कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपसे बात हुई ना तो और भी बढ़िया लगे कि और भी बढ़िया हो गई, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी और आज जाकर कॉल लगा तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ।
1: वाह जी, हम भी बहुत खुश हो गए हैं आपसे बात करके, और आपकी प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
0: मैम फिल्म का नाम है अंधा कानून, उसमें भाई बहन का एक सॉन्ग है ना, वो सुना दीजिए।
1: अंधा कानून फिल्म का, बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे इस फिल्म से गीत जो रक्षाबंधन पर है, मेरी बहना, है ना, मेरी बहना दीपानी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। लीजिए सुनिए।
0: ओके, बाय।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सनोतिया,
0: हाँ।
1: जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी, मांगीलाल चंदेल जी, नमस्कार और स्वागत है आपका। पता है कैसे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगी।
0: बिल्कुल, हम भी ईश्वर की कृपा से बढ़िया हैं और आप स्वस्थ रहें, यही हमारी भी कामना है।
1: जी। और बहन जी, आज रक्षाबंधन है,
0: जी
1: तो आपको हार्दिक शुभकामना और बधाई हो मेरी ओर से, और
0: जी
1: तमाम सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी टीम को भी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी आकाशवाणी टीम तक आपकी शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है अनजाना,
0: हाँ जी,
1: और गाने गाने के बोल है, हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साथ
0: बिल्कुल, लीजिए आपकी पसंद का गीत सुनिए।
1: में। तो कुछ मित्रों को याद कर सकता
0: बिल्कुल,
1: हूँ मैं,
0: करिए करिए।
1: नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, बसंती लाल जी हैं,
0: जी
1: केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं,
0: जी
1: और हमारे हमारी बहन जी हैं असीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी, बलवंत कुमार वर्मा जी हैं, शेख हैदर खान जी हैं रतलाम से,
0: जी
1: इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
0: गोविंद जी, जल्दी से अपना गीत बता दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम बताए।
1: हाँ, दीदी पिक्चर का है मेरे भैया को।
0: ठीक है, हम बिल्कुल आपको सुनवाएंगे ये गीत। और बताएं।
1: बहुत बढ़िया है सर, राखी की तैयारी चल रही है।
0: हाँ जी, है बिल्कुल, राखी की तैयारी करें और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। और हम आपको सुनवा रहे हैं,
1: ठीक है,
0: आपने जो दीदी फिल्म का गीत पसंद किया है, आइए सुनिए।

चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद और बहन का प्यार, मुबारक हो आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन का त्यौहार। इन्हीं

0: कामनाओं के साथ अनुमति दीजिए माजिदा खान को एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: स्वागत है आज आपका आपकी रेडियो मित्र श्वेता की ओर से, और साथ ही आपसे प्यार भरा अनुरोध कि आपके फोन का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, मगर एक निश्चित अंतराल यानी 10 दिन को ध्यान में रखकर आप फोन करें, यानी एक 10 दिन का अंतराल जरूर रखें ताकि सभी रेडियो सुनने वाले मित्रों श्रोता साथियों से हमारी बात हो सके। तो आज इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारा फोन नंबर है कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने के लिए 2660902। बाहर के श्रोता साथी भोपाल का एसटीडी कोड लगाएं 0755 और हमसे बातें करें। तो इंतजार है हमें आपके फोन कॉल का।
2: हेलो, परम माननीय दीदी सारा सप्रेम, प्यार है, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
2: जी हृदय से धन्यवाद।
1: आपका नाम बताएं।
2: दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं और आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आप लोगों का प्रसारित कार्यक्रम सुनते रहते हैं, आप लोगों से वार्तालाप होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुखद अनुभूत होती है और हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है।
1: जी तो बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: दीदी सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
1: जी आपको भी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। जी
2: जी हृदय धन्यवाद। दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बेईमान।
1: जी
2: और इसमें रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा और सुंदर सुरीला गीत है।
1: जी
2: जैस धरती और गगन का, जैस चंदा और किरण का, जैस भाई और बहन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। बहुत ही
1: बहुत अच्छा आप गा भी रहे हैं और हमें आपकी आवाज में ये गाना सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना?
2: धन्यवाद
1: जी, और आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हाँ मैं ग्राम बालों पे लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ
0: और
1: जी
0: आपकी जगह का नाम एक बार और बताएंगे हमें।
1: मैं ग्राम बालोदा लखा
0: जी
1: तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी तो कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में बताएं, आपका फोन
1: आपके
0: लगा
1: मेरा
0: है।
1: वो बरसे झोलिया मेरी मोहम्मद तेरे दर पे खाली नहीं जाऊंगा वो है ना। वो
0: बताए कौन सी फिल्म का गाना,
1: फिल्म शायद वो याद नहीं आ रहा पर गाया
0: भर दे
1: था वो।
0: झोली मेरी, वो वाला गाना ना।
1: हाँ हाँ वही वाला
0: जी, ये फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना
1: बजरंगी
0: है।
1: भाई जान।
0: जी
1: ठीक
0: जी
1: है ठीक है
0: जी
1: ओके ओके
0: बड़ा ही
1: बस
0: प्यारा गाना है। और बताएं कैसे हैं आप।
1: क्या करें मौसम अच्छा क्या क्या कल पानी अच्छा गिरा परसों ग्रोह तो बस फसलों का मैं आनंद ही आनंद है हो रहा है।
0: अच्छा, मौसम अच्छा
1: हाँ
0: हो गया है और
1: हाँ
0: बारिश भी अब है ना अच्छी खासी हो रही है।
1: नहीं बहुत बढ़िया बारिश मैडम अच्छी हो रही है
0: हाँ
1: और फसल में जान आ गई कि नहीं तो वो क्या हो गया अगर बारिश नहीं होती तो वो डिफिकल्टी हो जाती कठिनाई हो जाती
0: बिल्कुल
1: है तो
0: बिल्कुल।
1: सब लोग भी इंतजार कर रहे थे पानी का।
0: चलिए,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छा गीत पसंद किया है और
1: ओके
0: साथ ही साथ आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके
0: नमस्कार।
1: ओके।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्ते दीदी जी।
0: हाँ, आपका नाम बताएं।
1: जी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे। जी
0: मनोज नामदेव जी,
1: हाँ दीदी,
0: तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको।
0: हाँ, अपनी जगह का नाम एक बार फिर से बताएंगे।
1: मनपुरा जिला शिवपुरी।
0: अच्छा जी, तो बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: दीदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा तिरंगा,
0: तिरंगा फिल्म का
1: और
0: जी।
1: उसमें गाना है, उसमें एक रक्षाबंधन पर गाना है, तो
0: जी
1: आप वो सुनवा दो आप।
0: जी एक और बता दीजिए हमें मूवी,
1: चलो चलो ठीक है। तो दूसरी
0: एक
1: मूवी
0: और
1: है
0: मूवी
1: फिल्म
0: का
1: का
0: नाम
1: नाम
0: बता दीजिए हमें। हाँ
1: जी चम्मल की कसम, दूसरी फिल्म है उसमें
0: जी
1: गाना, फिल्म का नाम रहेगा चम्मल की कसम,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: उसमें गाना है मेरे भैया से कहना बहना याद करी।
0: बिल्कुल, कल ही
1: क्योंकि आज
0: रक्षाबंधन है।
1: जी बिल्कुल दीदी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर आप एक गीत सुनवा दो, और बहनें हमारे पास आज आई हैं।
0: जी
1: जी जी जी जी
0: जी बिल्कुल, तो
1: और बताना
0: आपने।
1: चाहे जी बताना चाहते हैं
0: हाँ
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश हो, या
0: हाँ
1: आपके किन से अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम हो। बहुत अच्छे से आपके कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, और आप मेहनत भी बहुत जोर शोर से करते हो कार्यक्रम बनाने के लिए। तो मेरी ओर से सभी टीम को व आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया। तो देखिए, आपने फोन किया और हमसे अच्छी बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: मैडम जो है हम जिला महुआ
0: जी
1: और ग्राम पोस्ट आजनर तहसील कुलपाहा से बोल रहा हूँ। मैं क्षमाधर नाम दू
0: क्षमाधर
1: क्षमाधर क्षमाधर
0: जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हम ये रक्षाबंधन का सुनवा दीजिए कोई।
0: जी कोई गीत याद है आपको राखी के पर्व का?
1: जी
0: कोई गीत हम सुनवा दें या आप बताएंगे रक्षाबंधन के पर्व पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: रक्षाबंधन पे कोई भी गीत सुनवा दो।
0: जी जी बताइए वहाँ का
1: आवाज में।
0: जी जी बिल्कुल बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो मैडम पानी बरस रहा है।
0: अच्छा और क्या करते हैं आप?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ मैडम।
0: जी जी जी बिल्कुल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप रेडियो भी सुन रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो गया है।
1: तो मैडम जो है बहुत सहारा है ये हमारा। बैठे रहते हैं अपने काम करते रहते हैं और रेडियो लगा लेते हैं तो अपने गाने सुनते रहते हैं। आप लोगों के जो है
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल तो आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहे। आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका जो प्रोग्राम 11 बजे रात तक सुनता हूँ बराबर।
0: हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर, है ना। आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम,
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम मूलचंद मौर्या, गेंदालाल परिहार।
0: जी, आपने देखिए फ़ोन किया, इसके लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस
1: जी
0: हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप जैसे फ़ोन करते हैं, है ना,
1: जी
0: हमें बड़ा अच्छा
1: जी जी
0: लगता है। बस आप 10 दिन का एक अंतराल रखिए सभी श्रोता साथी।
1: नहीं, मैम
0: हाँ जी,
1: 15 रोज से ज़्यादा हो गए मैंने फ़ोन लगाया
0: बिल्कुल
1: आपको
0: बिल्कुल,
1: कर दिया।
0: हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। बाकी सारे श्रोता साथी भी इस बात को ध्यान रखें कि 10 दिन के अंतराल में आप हमें फ़ोन करिए, ताकि सभी श्रोता साथियों को अधिक से अधिक मौका मिल सके।
1: जी सभी को रक्षाबंधन की
0: जी
1: शुभकामना
0: जी
1: देना चाहता हूँ।
0: हाँ, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम गाना है हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का गाना है, गाना
0: जी
1: फूलों में तारों में गाना है ना बहनों।
0: जी जी हाँ, बड़ा प्यारा गाना है ये।
1: जी जी
0: हाँ, तो आपने फ़ोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: नमस्कार।

0: और
1: जी
0: कैसे हैं आप बताएं?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, और कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हम चाहेंगे तिरंगा फिल्म का।
0: तिरंगा फिल्म का। अच्छा,
1: जी
0: और एक मूवी बता दीजिए जिसका आप सुनना
1: इसे
0: चाहते हैं।
1: इसे समझो ना रेशम का तार भैया।
0: बिल्कुल, हम जरूर सुनवाएंगे आपको। एक और मूवी का नाम बता दीजिए।
1: हरे रामा हरे कृष्णा।
0: हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता साथी जो है ना कॉल कर रहे हैं, वो लगभग यही फिल्म के गाने बता रहे हैं, रक्षाबंधन के पर्व पर।
1: क्योंकि रक्षाबंधन है मैडम कल।
0: हाँ, बहुत सारे श्रोता साथियों की लगभग यही पसंद हो रही है। हाँ हाँ जी, एक और बता दीजिए।
1: आपके लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, एक और मूवी का नाम बता दीजिए।
1: बंधन, फिल्म का नाम बंधन।
0: जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी बात कर रहे हैं हमसे और वो यही फिल्मों के नाम बता रहे हैं, तो कुछ अलग।
1: जी
0: हाँ बिल्कुल, ये
1: तो
0: भी आपकी
1: सभी
0: पसंद।
1: उद्घोष का हमारी जितनी बहनें हैं सब सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी।
1: और हमारे सारे मित्र हैं जितने भी श्रोता, उनको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
0: जी
1: सारे देशवासियों को शुभकामनाएं
0: जी
1: और जो सुन रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं।
0: जी आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ। नमस्ते मैम।
0: इंदौर से आप बोल रही हैं, आपका नाम? हाँ जी,
1: जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में।
1: राखी है, आपको राखी की बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी फिल्म का नाम है लावारिस
0: जी,
1: और गाना है काहे पे से पे इतना भ्रमण करे वाला।
0: जी, तो कैसा मौसम है वहाँ का, इंदौर का?
1: इंदौर का मौसम तो अच्छा, हवा चल रही है, कल बारिश हुई थी, परसों रात में भी हुई थी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए।
1: और ये बहन सुनना चाहेंगी, मंदसौर में ही अंजुम परवीन नाम है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और मम्मी का नाम नूर भी है और बहन रोशन।
0: बिल्कुल, तो आपने फोन किया,
1: सुना रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनवाएंगे। और आपने फोन किया, हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्ते
1: हेलो
0: जी। नमस्कार,
1: जी। नमस्कार बहन जी। अच्छा
0: आपका नाम बताएं। बताएं, मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और
1: थैंक
0: फोन
1: यू
0: करें
1: बहन
0: गीत सुने में। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
1: जी। आज आप सुनवा देना, फिल्म का नाम है करण अर्जुन और गीत के बोल हैं बंधन दिलों के बंधन, फिर नाते दिलों के नाते।
0: जी, और बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी बस मैं हम फूल माला का काम करते हैं
0: जी।
1: और सजावट वाला, डेकोरेशन वाला, और साथ में खेती किसानी भी करते हैं। और
0: अच्छा
1: इस
0: अच्छा
1: समय हमारे यहाँ मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, बारिश 3-4 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, धूप देखने को नहीं मिली है। तो
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: इस समय फसल
0: और इस मौसम
1: नुकसान
0: में फूल अच्छे हो रहे हैं आपके पास में, मतलब आपकी
1: जी फूल
0: दुकान
1: तो
0: में
1: हो रहे हैं, लेकिन क्या है बारिश हो रही है ना, तो इससे नुकसान हो रहा है।
0: फूलों का। अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा अच्छा
1: क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी मिलना चाहिए।
0: हाँ, फूलों को धूप की भी ज़रूरत रहती है ना,
1: जी
0: और बारिश भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी
1: हाँ, बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी
0: फसल।
1: मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 घंटे के लिए खुल जाए मौसम तो
0: हाँ, जी जी जी
1: अच्छा रहता है। लेकिन बिल्कुल 3-4 दिन से झमाझम बारिश हो रही है, इस समय हमारे
0: अच्छा अच्छा
1: तालाब चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है।
0: हाँ, जी जी जी जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अच्छा मौसम, खुशनुमा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए,
1: जी जी
0: और आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी जी

0: गीत सुने में स्वागत है आपका। बताएं, आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंश मेल बगुला।
0: तो बताएं, फोन करें गीत सुने में आपका फोन लगा है, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम गीत भी सुनेंगे अभी, चाहे आप बात करना हो।
0: बिल्कुल, हम बात करेंगे आपसे। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी जी
0: मैडम जी, कैसे हैं आप?
1: ट्राई कर रहा था फोन, अब जाके फोन लगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी।
1: तो उधर मौसम कैसा हो रहा है मैडम?
0: यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है ना, बढ़िया मौसम है यहाँ पर। तो
1: अच्छा, अभी तो धूप है, ठंडी हवा चलती
0: है। बताए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा धर्म युद्ध।
0: अच्छा, इसका गीत सुनना चाहेंगे?
1: इसका एक गीत है बाबुल,
0: और एक मूवी का नाम बता दीजिए।
1: अगर फिर ये नहीं मिले तो फिल्म का नाम रहेगा रक्षाबंधन, इसी पर ये रक्षाबंधन वाला गाना है, सिया घोषाल की आवाज है, वो सुना दीजिए दोनों में से एक।
0: जी जी, आपने फोन किया, हमें अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। अब दीजिए मुझे अनुमति आपके रेडियो मित्र श्वेता को। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। आज विश्व संस्कृत दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, दर्शन और सभ्यता की शाश्वत भाषा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता के निरंतर वाहक रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृत दिवस के अवसर पर कहा कि वेद, उपनिषद, दर्शन, साहित्य की समृद्ध विरासत को संजय हुए शाश्वत भाषा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही बैठक, समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए पहले से स्वीकृत मात्रा के अलावा 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदने की अनुमति दी है। इससे राज्य में मूंग की कुल स्वीकृत खरीदी 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 5,33,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीदी की जा चुकी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आज प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डबवाली हरियाणा से जेके भकोलिया, सुनीता भकोलिया और संजय, अनिल, मीना और उनका पूरा परिवार इस गाने को पसंद करता है। ये गाना है किशोर कुमार की आवाज में, जिसको लिया है हमने फिल्म त्रिशूल से। किशोर कुमार के साथ में दूसरी आवाज है लता मंगेशकर की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है। खयाम का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जीने की राह से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामणी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, उज्जवल डेरे और अनुत डेरे ने। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश भेजी है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने, सुनते हैं ये गीत।

हम सब चोर हैं, ये फिल्म का नाम है। आवाज हैं कविता कृष्णमूर्ति, माफ कीजिए, अलका याग्निक, कुमार सानू और उनके बहुत सारे साथी, और नवाब अर्जुन ने इस गाने को लिखा है। बपिलेरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महाराष्ट्र बीड़ शहर से। प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, संतोष पगारिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इसी गाने को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म स्वामी से, आवाज़ है यसुदास की। अमित खन्ना ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। उस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, यास्मीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आशा रेड्डी श्रोता संघ के श्रोता हैं, अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक बदलापुर मुंबई से, आकार हाइट बहादुर बहादुरा से नागपुर से, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म झुक गया आसमान से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छबड़ा राजस्थान से लिखने वाले हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोड से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की फरमाइश है। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार मोहब्बत फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार को। आनंद बख्श ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के सदस्य। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय गाजीपुर से, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। और थाना रोड बक्सर से ज्युत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुषी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक महंत मूणत, चेतना नाहटा, दीक्षा कुश मूणत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य ने। सुनते हैं ये गीत।

0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बड़े अच्छे लगते हैं
6: क्या
5: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
6: और
7: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
8: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
9: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
8: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
9: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
8: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
10: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
11: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
12: आकाशवाणी इंदौर।
11: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
9: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
8: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
9: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
8: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
11: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
13: हाँ हाँ क्यों नहीं,
14: अंगवा की डार पे जी।
11: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
15: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
16: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
15: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
17: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
18: थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया की 10वीं कड़ी।

भैया। अभी तक आपने सुना है जमुनिया और उसका पति रतन गांव में सरकार के पट्टे की जमीन पाकर बहुत खुश थे। रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से मिलकर उसे 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया और दीवान ने छल कपट से उसे 25,000 का बना दिया। रतन को पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली। जमुनिया को उसकी दुदमुही बेटी के साथ करण ने घर से निकाल दिया और उसका बेटा गोलू हथिया लिया। पास के एक गांव के झुलन ने माँ बेटी को सहारा दिया। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजर बसर करने लगी जमुनिया। यहाँ पर गांव के गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करती जमुनिया ने न केवल अक्षर शब्द वाक्यों की रचना सीखी, वरन अंकों का ज्ञान जोड़ना घटाना भी सीखा। जो भी खाली समय मिलता वो अध्ययन करती। गुरुजी ने संक्षिप्त में उसे भारत के अतीत और वर्तमान के बारे में भी बताया। उधर करण ने नशे की लत के कारण भाई रतन द्वारा बनाया गया खेत बर्बाद कर दिया और दीवान ने उसकी पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बना दिया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दीवान ने गांव को संबोधित किया, जिसमें गुरुजी, जमुनिया और झुल्लन भी शामिल हुए। दीवान ने बड़ी चालाकी से अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन जमुनिया सब समझ गई। अब आगे।

0: अरे आइए आइए पटवारी जी, आइए आइए। कहिए साहब, क्या हाल है आपके?
1: बस देवान जी ठीक ही हैं। आप कहिए, कुशल मंगल तो है ना?
0: अरे आपकी कृपा है और आप लोगों का साथ रहेगा तो कुशल मंगल तो रहेगा ही। क्यों
1: अरे अरे, हम आपसे
0: पटवारी
1: अलग कहाँ जा सकते हैं दीवान जी, आप बस हमारा ऐसे ही ख्याल
0: जी बिल्कुल साहब,
1: रखिएगा।
0: अरे आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। जी बताइए, बिलायती चलेगी अभी?
1: अरे राम राम, इतनी जल्दी? थोड़ी रात तो ढलने दो दीवान
0: अरे
1: जी।
0: पटवारी जी, यहाँ तो अपनी हुकूमत चलती है, अपना ही राज है भैया,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए रात दिन की फिक्र तो हम करते नहीं है। बस आप कह रहे हैं तो ठीक है, रात को ही सही। लेकिन पटवारी जी, आज यहीं आराम कीजिए हमारे साथ।
1: अरे
0: हाँ
1: वो तो अपना ही घर है, उसमें कोई बात नहीं।
0: बिल्कुल। तो बताइए फिर, अभी क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अरे
1: अभी तो दीवान जी एक गिलास ठंडी लस्सी हो जाए।
0: बहुत खूब, क्या बात करिए, ठंडी लस्सी। अरे भाई सुनो,
2: जी मालिक।
0: हमारे पटवारी साहब के लिए एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर आ भाई।
2: आओ मालिक।
1: अच्छी ला रहा भैया।
0: अरे तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी पटवारी जी। आप तो ये बताइए,
1: हाँ
0: ये सरपंची के चुनाव कब आ रहे हैं?
1: अरे यार भाई,
0: अरे तो हमारा ख्याल रखिएगा। हाँ
1: वो तो है।
0: अरे भैया, हमें ही जीतना है, हम ही इस गांव का विकास करेंगे। हाँ
1: मगर सरकार, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
0: क्या,
1: हाँ
0: किसके बाप में दम है जो हमें रोकते चुनाव में खड़ा होने से और जीतने से?
1: अरे ये बात नहीं है दीवान जी, अरे असल में यहाँ की सीट महिला सीट घोषित हो गई है।
0: हाँ महिला सीट।
1: हाँ तो अब आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते ना। कल ही कलेक्ट्रेट गए थे हम, वहीं पता लगा।
0: अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई पटवारी जी।
1: हाँ
0: ओहो, अच्छा ये लीजिए, लस्सी पीजिए, तब तक
1: हाँ
0: आप
1: हाँ हाँ
0: लस्सी पीजिए, फिर

0: पर सूचना कलेक्टर के माध्यम से ही आती है।
1: चलो, ये ससुरी सरकार भी अब लुगाइयों से सरपंची करवाएगी हैं? अरे क्या हो गया है लोगों को?
0: अरे पर मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं? एक आसान सा रास्ता है।
1: आसान सा?
0: हाँ।
1: क्या रास्ता है पटवारी जी?
0: अरे अपनी मालकिन तो है।
1: हाँ?
0: हाँ, जीत तो वो ही जाएंगी, जहां आप वहां जीत। अरे सरपंची तो घर में ही रहेगी ना।
1: तो चलो पटवारी जी।
0: हाँ?
1: यानी मालकिन के लिए वोट मांगे चलकर।
0: आओ।
1: तो चलो तैयारियां करो। अरे अपने आदमियों को भी तो काम पर लगाना है।
0: आओ।
1: यही ठीक रहेगा ना?
0: ठीक रहेगा।
1: ए गोलू, ये ले गिलास उठा।
0: अरे ये तो रतन का बेटा है ना दीवान जी?
1: हाँ पटवारी जी, खूब पहचाना आपने।
0: हाँ वही थे मैं कहूँ।
1: अरे पटवारी जी, इसे करण ने हत्या लिया था और उससे हमने हत्या लिया।

0: स्वाधीनता दिवस पर दीवान की बातों से ये तो साफ हो गया कि सरकार ने हमारे गांव के लिए पैसा दिया है, उसको खर्च करने का अधिकार गांव को है, पर गांव है कहाँ? दीवान तो खुद ही गांव बना बैठा है।
1: यही तो जमनिया, ये सरपंच नहीं परपंच है।
0: परपंच? आप भी गुरुजी। परपंच। अच्छा गुरुजी, हम आज क्या पढ़ेंगे?
1: आज हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तुमसे। हैं
0: गुरुजी, तैयारी तो की नहीं, फिर भी पूछिए, कोशिश करूंगी। हाँ
1: अच्छा अच्छा, हाँ तो बताओ जमुनिया, के भारत को तकनीक विज्ञान के रास्ते विकास पर लाने का सपना किसका था, यानी किस प्रधानमंत्री का था?
0: राजीव गांधी जी का।
1: शाबाश शाबाश, अरे भाई बहुत अच्छी समझ है तुम्हारी। अरे मेघा बिटिया, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई हैं?
2: प्रणाम गुरुजी।
1: अरे प्रणाम प्रणाम।
2: आज ही आए हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: और ये हमारे साथी हैं कॉलेज के।
1: अच्छा,
2: ये शिल्पी है। हाँ। प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम।
2: और ये है जयंत।
3: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम भाई।
2: इन्हें भी मैं साथ ले आई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, जीते रहो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा किया जो तुम लोग गांव आए, इन्हें भी देखना और जानना चाहिए। अरे भाई श्रीमती जी, श्रीमती जी, अरे शहर से कुछ मेहमान आए हैं, अरे कुछ चाय पान का इंतजाम करो भाई।
4: करते हैं करते हैं, जरा मेघा बिटिया को देखने तो दो, बड़ा चश्माशमा लगा कर आइए।
2: चाची तुम तो मजाक मत उड़ाओ ना।
4: अरे मैं तो बस ऐसे ही, इन्हें यहाँ कहाँ ले आई नरक की सैर कराने?
5: हमें गांव अच्छा लगता है।
4: 2 दिन में उल्टे पांव भाग जाओगी बोरिया बिस्तर समेट कर।
2: गुरुजी।
1: हाँ।
2: ये कौन है?
1: बताओ भाई जमुनिया, तुम खुद ही बताओ।
0: मैं जमुनिया हूँ मेघा दीदी, गुरुजी से पढ़ती हूँ।
2: अच्छा
1: भाई, गजब की लगन और प्रतिभा है इस लड़की में मेघा। अब तुम खुद अपने आप को देख लो, हैं? अपने ही गांव सेवक से लड़कर तुम्हें भेजा था कंप्यूटर पढ़ने के लिए, हैं? सब हंसते थे तुम पर, और अब देखो इतना स्मार्ट हो गई हो कि सारी दुनिया की नब्स पर हाथ रखे हो।
5: अच्छा, बड़ा इम्प्रेशन जमा रखा है तुमने।
1: अच्छा भाई, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में?
5: हम तीनों यही सोचकर आए हैं गुरुजी, एनजीओ खोलेंगे, गांव के लोगों को जागरूक बनाएंगे।
1: अच्छा।
5: उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे।
1: मतलब समाज

0: सेवा, तब तो तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत तो गांव देहात में ही है। पर इतना पढ़ लिख कर यहां कैसे आओगे तुम लोग?
1: मैं और शिल्पी तो गांव में रहकर ही काम करना चाहते हैं, पर ये जयंत है ना, शहर की रट लगाए रहते हैं।
2: अरे शहर ना हो, पर कम से कम ब्लॉक या तहसील प्लेस तो हो, जहां रहने खाने पीने और आने जाने की सुविधा तो हो। अरे जिंदगी में दो पैसे भी तो कमाना है, सिर्फ कुरी समाज सेवा से तो काम नहीं चलेगा ना।
0: अरे मेघा बिटिया
1: जी,
0: इन्हें कुछ दिन गांव घुमाओ
1: जी,
0: हो सकता है यहाँ की समस्याएं और चुनौतियां इन्हें यहीं रोक ले।
1: लो भाई, सब लोग चाय पियो और गांव की समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करो। लो चाय, लो चाय। हाँ।
3: हमने कुछ सुना है, क्या तुमने भी सुना है?
4: अरे ऐसा क्या सुन लिया भाई, बड़ी खुसर फुसर हो रही है।
5: अरे यार साफ साफ बोलो ना यार, क्या सुना है बताओ।
3: भैया वो आपके सरपंच जी के चुनाव में दीवान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
4: क्यों? क्यों भाई? हाँ। क्या हो गया है? कोई मामला मुकदमा हो गया क्या?
3: अरे नहीं भैया, वो सीट महिला सीट हो गई है, महिला सीट।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, तो अब की बार उनकी मालकिन चुनाव लड़ेंगी।
5: अरे लगता है वो जीत भी जाएगी क्या भैया?
4: पर दूसरा क्यों नहीं जीत सकता?
5: दीवान ने सबको फंसा के रखा है कि नहीं? अरे सबको पटा के रखा है यहाँ से माता।
3: भैया इसीलिए तो सब उससे छुटकारा चाहते हैं, भीतर ही भीतर। हाँ।
4: पर और कौन लड़ेगा मालकिन के सामने?
3: अरे क्यों, अपनी जमुनिया तो है। हाँ हाँ, उसे सब मिलकर खड़ा करो।
5: अरे हाँ हाँ, ये सभी के काम आती है।
3: हाँ हाँ, और का।
5: पर अब तो पढ़ लिख भी गई है।
3: हाँ भैया सही बात है, पढ़ लिख गई, अपना तो विचार यही है।
5: अखबार पढ़ने लगी है भाई।
3: हाँ भैया,
5: और वैसे भी एक बात तो है, समझदार तो है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: बात तो एकदम ठीक है यार। चलो जमुनिया से बात करते हैं।
3: हाँ चलो चलो, जमुनिया से बात करते हैं। चलो
6: तुम लोग यहाँ का खोसर फोसर कर रहे हो?
7: कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं।
3: सुना है अब की बार मालकिन सरपंची का चुनाव लड़ने वाली है।
6: अच्छा, बड़ी जल्दी बात गांव में फैल जाती है। ठीक सुना है तुम लोगों ने। और सुना, तुम लोग ही उन्हें वोट दोगे? दोगे ना?
7: जी जी मालिक, जी मालिक। और कौन है जिसे हम वोट देंगे?
6: अरे कोई हो तो भी, वोट मालकिन को ही पढ़ना चाहिए, समझ गए?
7: अच्छा मालिक।
6: अच्छा चलते भाई।
3: ये लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।
4: सच्ची भाई, इसके कान कितने तेज है।
3: हा?
5: अरे यार, उसके सामने तो सभी की खिड़की बन गई थी। सबने बोला वोट मालकिन को ही देंगे।
3: अरे भैया बोलने से क्या होता है, है? ठप्पा लगाना होगा तब ना देखेंगे किसका होता है।
8: अरे इसीलिए मतदान गुप्त होता है।
5: आ, आ, आ।

0: वाह मजा आ गया आप लोगों का गीत संगीत सुनकर। शहर से भी लोग आ गए हैं। सच्ची मजा आ गया, एकदम मजा आ गया।
1: अरे ये कौन है? ग्राम सेवक की बिटिया है का?
2: अरे ये तो बच्चा है। अरे बिटिया नहीं, माफ करना बेटा, मुझे आला काम है, सो बराबर देखो नहीं, हम समझे कि मेघा बिटिया है। हाँ
3: अरे कोई बात नहीं बाबा, बाबा पर आप लोग सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
0: बहुत अच्छा, मैं इधर हूँ झुल्लन काका, मेघा। ये मेरे दोस्त है जयंत।
2: अच्छा।
0: शहर से आए हैं घूमने
2: हाँ।
0: फिरने। और ये है शिल्पी।
2: अच्छा बेटा।
0: ये भी शहर से आई है।
2: वाह।
0: हम सब लोग साथ ही पढ़ते थे।
2: हाँ।
4: माने हमारे मेहमान ही है ना भाई।
2: हाँ।
4: तो आ बैठो बैठो सब लोग बैठो,
2: बैठो।
4: और आज भाई तुम लोग भी सुनो हमारे सुख दुख।
2: हाँ।
4: क्या नाम से?
0: ठीक है दीनू चाचा, आप लोग गाओ।
4: हाँ यार हाँ, चलो भैया शुरू हो जाओ।
2: हाँ। गाओ भैया गाओ, चलो शुरू तो हो जाओ। हाँ।

0: आप मुकुंदी है ना? मेघा ने बताया था साधन के अभाव में आप अस्पताल नहीं ले जा पाए थे अपनी पत्नी को।
1: वो कहानी छोड़ो बिटिया, याद आता है तो कलेजा फट जाता है। अभी तो हाल ये है कि शाम को 7 बजे ही अंधेरा हो जाता है, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता, इतना अंधेरा होता है।
0: क्यों, बिजली नहीं आती क्या?
2: नहीं, शर्म आती है बेचारी बिजली को। और वैसे भी यहां तक आते आते थक भी जाती होगी।
0: नहीं, वो बिजली के खंबे लगे देखे तो समझे कि बिजली होगी।
3: अरे खंबा की मत पूछो भैया, बरसों से ऐसी लगे देख रहे हैं। अरे यार पानी मानी तू लेके आया यार।
2: हाँ भैया, हाँ
3: पानी मानी की पूछो।
2: हाँ सही बात।
0: अरे नहीं, अभी प्यास नहीं है।
2: हाँ।
0: लगेगी तो मांग के पी लेंगे।
2: अच्छा क्या साहब, प्यास नहीं है, वरना वही है पंप का पीला पानी पीना पड़ता।
4: और आप अकेले अकेले क्या खा रहे हैं?
2: वही अपनी सदाबहार पकवान है साहब, प्याज के साथ नमक और रोटी। सवेरे से खेत में जुटे थे सो भूख लगाई थी।
1: आप लोगों के खाने का प्रबंध करें क्या?
5: अरे नहीं, खाना ये लोग मेरे घर खाएंगे।
1: ठीक है।
5: हाँ, गाना जरूर सुनेंगे, इसलिए आए हैं। और हाँ, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, कम से कम एक लालटेन का इंतजाम तो कर लो।
6: अरे बेटा ये क्या खे रही हो हैं? यहाँ लालटेन में डालने का तेल कहाँ मिलेगा?
1: अरे हाँ, राशन की दुकान का तो हाल ही मत पूछो, गेहूं चावल तेल खाद सब कुछ आता है, पर पता ही नहीं चलता कि किसके पेट में चला जाता है।
6: हाँ?
4: अरे कलेक्टर बीडीओ तहसीलदार कोई तो आते होंगे गांव में कभी।
3: अरे भैया गांव तलक कि उसके आसपास तलक भी सड़क होती तभी तो आते ना बेचारे।
6: अरे हाँ बेटा, सड़क है नहीं, स्कूल है नहीं, अरे बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़े कैसे हैं?
0: अरे आपके सरपंच विधायक कुछ करते नहीं, यहाँ आते भी नहीं क्या?
7: आते हैं, चुनाव के समय आते हैं।
6: हाँ।
7: उस समय सब कुछ मिलता है राशन की दुकान पर, बाद में वही डाक के 3 पात। चुनाव आने वाला है, अब देखना असली खेल। यहाँ मुफ्त दारू तक मिलती है, कम्बल मिलता है, धोती मिलती है, बाद में सब गाया।
5: अब बोलो जयंत।
4: लगता है यहीं से शुरू करना पड़ेगा।
8: मानत बिहने कदम मा के छैया तैब अकेले दबा दे पैया।
9: काम आई, आज तो होली है ना, आज भी होलिया पंखे बनाओगी?
10: जमुनिया काम नहीं करेगी तो चिड़ैया को खिलाएगी क्या? खाना तो होली को भी पड़ता है ना, है ना? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
9: पर एक दिन तो आराम कर लो ना माई, जब मुझे बुखार आया था तब तो दिन भर मेरे पास बैठी रही, कोई काम नहीं किया।
10: उसी की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, ज्यादा काम करके। वैसे भी ये त्योहार गरीबों के लिए नहीं होते। सुना है अब इस गांव में सरपंची औरतें करेंगी, मैं लड़ूंगी चुनाव।
9: का सरपंची? इस सरपंची का होता है माई?
10: तब सरकार जो पैसा गांव को देगी वो सारे काम हमारी मर्जी से होंगे, अपनी मर्जी से गांव की तरक्की कर पाएंगे।
9: अरे वाह, तब तो तू पूरी तरह सही है माई इस काम के लिए। हाँ।
10: पर मुझे डर लगता है।
9: क्यों माई, काहे का डर?
10: मैं अकेली क्या कर पाऊंगी?
9: सब कुछ माई, तुम सब कुछ कर सकती हो।
10: सच?
9: माई तब तो हम गोलू भैया को भी ला सकते हैं ना।
10: चिरैया ये क्या कह रही है रे,
0: जिस भाई को तूने देखा नहीं उसकी तुझे इतनी फिक्र है?
9: भाई कोनू भैया को ले आना।
6: अरे जमुनिया, जरा बाहर निकल कर तो देख बिटिया, हैं? लोग अपनी ड्यूटी पर आए रंग अबीर लेकर। अरे मेघा, मेघा से तो तुम मिल ही चुकी हो ना, ये इनके दोस्त हैं। और
0: प्रणाम। इन सब से मिली हूँ बाबा।
6: हाँ।
0: गुरुजी के घर। ये जयंत जी है।
6: हाँ,
0: और ये शिल्पी। ठीक कह रही हूँ ना?
11: बिल्कुल ठीक कह रही है जमुनिया जी।
6: हम सब बहुत सोच समझ कर तुम्हारे पास आए हैं बिटिया, मना मत करना, सरपंची का पर्चा भर ही देना। पूरा गांव अंदर ही अंदर तुझे सरपंच बनाना चाहता है बिटिया।
0: कहां हम बाबा और कहां सरपंची, ना हमारे बस की बात नहीं। हमें डर लगता है कुछ कुछ नहीं कर पाए तो। हमारा तो ठीक है पर आप सबकी हंसी उड़ाएंगे लोग।
9: का माई, अभी तो खुद ही कह रही थी, अब मौका आया तो पीछे काहे हट रही हो?
0: हट यहां से, वो तो सपना था। सपना तो सभी देखते हैं ना।
12: डरो मत जमुनिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
13: बिल्कुल
5: और हम सब भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इस गांव के हित में काम करेंगे।
12: बिल्कुल करेंगे।
0: जब आप सब लोग साथ हैं तो जैसी आप लोगन की मर्जी।
12: जे हुई ना बात।
5: हमें पूरा विश्वास है कि इस गांव की तस्वीर आपके हाथों से सुधरेगी। बोलो सब लोग।
12: हाँ।

0: मैं अपना हक लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी, लेकर
1: रहूंगी। अरे ही चमुनिया आखिरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अरे उसकी इतनी हिम्मत,
2: आप कहें तो उसे काट कर फेंकाए, पता भी नहीं चलेगा। चुनाव का समय है मालिक, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। इस तरह ताव में आकर कुछ कर देंगे तो दाव उल्टा भी पड़ सकता है।
1: नाक नहीं कटनी चाहिए, समझ गए तुम लोग? नहीं तो पूरे गांव में आग लगा देंगे हम। अरे सब फसम हो जाएगा, बताए दे रहे हैं तुम लोगों को। हाँ
2: मालिक, आप नाक चिंता ना करो, आधे वोट तो दारू भंग से खींच लाएंगे, बाकी आधे लाठी के जोर से। इस चमुनिया को वोट देगा कौन?
1: बिल्कुल
2: रहे लोग कमल जट्टा पाली पर आ जाएंगे। आप तो बस अब सबसे मीठा मीठा बोलते रहिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
1: ये ज्यादा समझाओ मत हमें। हाँ अरे अपने काम से काम रखो, समझ गए?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की 10वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। यहां व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज विश्व संस्कृत दिवस है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि वेद, उपनिषद, दर्शन और साहित्य की समृद्ध विरासत को संजोए यह शाश्वत भाषा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। हम सभी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है और लगभग 1468 व्यक्ति लापता हैं। इनमें करीब 300 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय दल राहत और बचाव अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा के दौरान इस वर्ष पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमरीका के सेंट लुइस में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। दोपहर का 1 बजा है, लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को शिखा का नमस्कार। सखियों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस बहुत खूबसूरत त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।

कहते हैं सखी, और रिश्तों की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बांध पाना बहुत मुश्किल होता है। और भाई बहन का रिश्ता, जी हाँ, भाई बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी छोटी सी बात पर रूठ जाना, कभी बिना कहे एक दूसरे की पसंद समझ जाना, कभी बचपन की नोकझोंक, तो कभी मुश्किल समय में सबसे पहले एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना। जी हाँ सखियो, रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधने वाली एक राखी का त्योहार नहीं है, यह उन सारे अनकहे एहसासों का उत्सव है जो भाई बहन के रिश्ते को उम्र के हर पड़ाव पर खास बनाए रखते हैं। जी हाँ सखियो, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसे हम अनादिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। समय बदला, समाज बदला, रिश्तों को देखने का नजरिया बदला, और इन बदलावों के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप भी कहीं ना कहीं बदलता गया। लेकिन अच्छी बात यह है मेरी सखियो कि इन बदलावों ने इस पर्व की आत्मीयता को कम नहीं किया, बल्कि इसके मायने और भी व्यापक किए हैं। आज रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने या उसकी लंबी उम्र की कामना करने तक सीमित नहीं है। आज इसमें प्रेम है, समानता है, संवेदनशीलता है, और रिश्तों को नए नजरिए से समझने की एक खूबसूरत पहल भी है। जी हाँ सखियों, इन्हीं बदलते रंगों, इन्हीं नई सोच और इन्हीं खूबसूरत बदलावों पर आज हम करेंगे बातें हमारी सखियों से। जी हाँ सखियों, हमारे कार्यक्रम में आज हम शामिल कर रहे हैं कुछ महिलाएं जिनसे हमने जाना कि आज के समय में रक्षाबंधन उनके लिए क्या मायने रखता है और कैसे बदलते समय ने इस पर्व की परंपराओं को एक नया रूप दिया है और कैसे ये बदलाव इस त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। तो आपको सुनवाऊंगी उनसे हुई मेरी बातचीत इस गाने के बाद।

0: सखियों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक है। लेकिन हम बहनों के साथ सखियों, विडंबना यह है कि हम शादी के बाद एक दूसरे घर में चली जाती है, तो भाई के घर से बहन के घर की ये छोटी सी दूरी क्या हमारे भावनात्मक रिश्तों की दूरी बन जाती है? आइए इसी पर बात करते हैं प्रीति जी से। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रीति दुबे जी। तो प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रीति जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, साथ ही रक्षाबंधन पर्व की आपको और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि किस तरह का होता है आपका और आपके भाई का रक्षाबंधन?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सच कहूं तो अब राखी वैसी नहीं मनती जैसे कि सालों पहले मना करती थी। कारण भी है कि समय बदल गया है। पहले हम सब जब छोटे छोटे थे, भाई बहन, तो एक साथ रहते थे। समय बदला, हम सबकी शादियां हो गई। अब ऐसी स्थिति में कई बार राखी पर मायके जाना हो पाता है और कई बार नहीं भी हो पाता है। कई बार भाइयों का आना हो पाता है या कई बार नहीं हो पाता है। कारण है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है कि रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलना नहीं हो पाता, दूसरा ये कि हम जाना तो चाहते हैं अपने मायके, लेकिन फिर हमारी कुछ जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति भी हो जाती हैं। कई बार हमारी ननद का हमारे घर आना है, ऐसी स्थिति में लगता है कि अब जब वे यहाँ आने वाली हैं तो हम घर कैसे जाएं, उनका स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। कई बार लगता है कि यदि हम मायके चले गए तो बच्चों का क्या होगा, या तो बच्चे साथ में जाएंगे या बच्चे हमारे बिना रहेंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ये भावनात्मक असर हम पर पड़ता है और कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और हम याद करते हैं उस समय को जब हम बिल्कुल आज़ादी से, खुलेपन के साथ इस त्योहार को मनाते थे, जो अब नहीं मना पाते। लेकिन हाँ, आज भी लिफाफे में हल्दी, कंकु, अक्षत और राखियां रखकर मैं मायके भेजती हूँ। वहां पर मेरी भतीजियां हैं, तो वे मेरी भेजी हुई राखियां मेरे भाइयों को बांध देती हैं। तो हर स्थिति में ये त्योहार बहुत अच्छा है। इसकी सादगी, इसकी खूबसूरती, इसकी खुशियां, इसकी उमंग, इसका उल्लास एक अलग ही रूप लिए होता है, जो हमको कहीं ना कहीं खुशियां देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ प्रीति जी कि कई बार हम नहीं जा पाते, पर जतन में हम कमी नहीं करते। अगर कोई मायके की तरफ जा रहा है ना, तो हम कहती हैं मेरे भैया की राखी लेते जाना, कई दिनों पहले से राखी चुन के पोस्ट करना, बस भाई की कलाई जो है ना वो सूनी ना रह जाए। लेकिन आज के समय में खूबसूरत ट्रेंड चले हैं बहुत सारे, तो आपने किस ट्रेंड को अपनाया है, उसके हिसाब से अपनी राखी में क्या बदलाव किया है?
1: शिखा जी, विज्ञान और तकनीक का विशेष रूप से धन्यवाद हम बहनों को देना चाहिए कि आज अगर हम अपने परिवार में व्यस्त हैं, कुछ जिम्मेदारियों के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वीडियो कॉलिंग करके हम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से बात कर लेते हैं, राखी बंधते देख लेते हैं, तो लगता है हम मानो उस त्योहार में वहां शामिल हो गए। बस फर्क इतना होता है कि अपने भाइयों का अपने हाथ से एक तो मुंह मीठा नहीं करा पाते और दूसरा उनकी कलाइयों को स्पर्श नहीं कर पाते, किंतु वे जो प्रेम के पवित्र धागे हैं वे तो मन से मन तक जुड़े हैं। तो बस मैं ये कह सकती हूँ कि पहले प्रत्यक्ष मनता था और अब समय के अभाव में या परिस्थितियों के चलते हम वर्चुअल रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन मनाते तो हैं। शिखा जी, ये जो रक्षाबंधन है ये सनातन काल से चला आ रहा है, लेकिन एक बात इसमें बहुत अच्छी जो आजकल ट्रेंड में है और मुझे भी लगता है कि ये होना ही चाहिए, इसलिए मैं भी ऐसा करती हूँ कि हमें भाइयों की कलाई पर तो राखी बांधना है, लेकिन भाभियों की कलाई भी सूनी क्यों रहे। आपने देखा है आजकल बाजार में तरह तरह की सुंदर खूबसूरत राखियां मिलती हैं और जोड़े के साथ मिलती हैं, तो निश्चित ही ये तय होता है कि भाभियों की कलाई पर भी राखी बांधी जानी चाहिए। दूसरी चीज कि जैसे जैसे समय बदलता है, भाइयों पर जिम्मेदारियां आती हैं, जवाबदारियां आती हैं, तो कहीं वे अपने कर्तव्यों को बहनों के प्रति भूल न जाए। तो मुझे लगता है कि भाभियां भाइयों को उनके कर्तव्य जरूर याद दिलाती हैं और कहीं ना कहीं वे हमारे इस रक्षाबंधन के त्योहार को पूरा करती हैं। कहा जाता है कि माँ से मायका होता है, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि माँ से तो मायका होता ही है, भाभियों से भी मायका होता है, क्योंकि अब वे सारा प्यार हम पर लुटाती हैं जो हमारी माँ हमें करती है। सच कहूँ तो शिखा जी, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मेरी दो भाभियाँ हैं और हम भी किसी की भाभी हैं, तो हम जो अपने मायके से संस्कार सीखते हैं वही हम भी अपने परिवार में देते हैं।
0: क्या बात है प्रीति जी, तरह से आपने अपनी भावनाएं एक भाभी के लिए व्यक्त की है, वो वाकई में इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाभी ही तो है जो हमारे आने के बाद हमारे घर का, हमारे भाई का और हमारे मम्मी पापा का ख्याल रखती है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव इन दिनों हम देख रहे हैं सखियों, कि भाभियों के लिए भी बड़ी सुंदर सुंदर और प्यारी राखी आती है। अगर आपने अभी तक नहीं बांधा है तो आप भी इस नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रीति जी हमें आपसे बात करके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सखियों। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे एक बहुत खूबसूरत से गीत के साथ।

0: सखियों, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें कलाई पर बंधा एक छोटा सा धागा भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है। लेकिन समय के साथ हमारे रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया बदला है। आज बहन सिर्फ अपने भाई से रक्षा का वचन नहीं मांगती, बल्कि भाई बहन एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो आखिर आधुनिक समय में रक्षाबंधन का स्वरूप कितना बदला है? क्या राखी का अर्थ केवल रक्षा तक सीमित है, या फिर अब ये समानता, सम्मान और आपसी सहयोग का रिश्ता बन गया है? आइए इन्हीं पहलुओं पर, इन्हीं प्रश्नों पर बात करते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त हैं नेहा जी। तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में। नमस्कार।
1: नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस बातचीत में शामिल किया। तो शिखा जी, थैंक यू सो मच।
0: जी नेहा जी, बिल्कुल बात तो करनी ही थी। आज भाई बहनों के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारी सखियों को बताइए कि आप क्या है और क्या करती है, और उसके बाद रक्षाबंधन को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं, ये जानना चाहेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल। वैसे तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, शिक्षक हूँ मैं, और साथ में रंगमंच से भी जुड़ी हुई हूँ। काफी सारे नाटक वगैरह में मैंने कुछ भूमिकाएं निभाई हैं, और कुछ शॉर्ट फिल्म जो बनती है आजकल, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। साथ में राखी को लेके तो बड़ा उत्साह रहता है हमेशा, खासकर हम बहनों में।
0: हाँ, सही है।
1: और बड़ा मजा आता है कि हम राखी बांधेंगे और हमको भाई कुछ ना कुछ उपहार भी देंगे। राखी का त्योहार हमेशा से बहुत एक्साइटेड रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि वो शादी के बाद थोड़ा सा जो चेंजेस आ जाते हैं राखी के त्योहार में, हम बहनों के लिए, अगर हम दूर हो गए हैं उस शहर से जहाँ हमारा घर है, हमारा पीहर रहा है, हम जा नहीं पाते हैं अपने शहर, और भाई को अपने हाथों से सामने प्रत्यक्ष रूप से राखी बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
0: मुश्किल तो हो गया है। हम महिलाएं ना साल में एक बार तो कुछ ऐसा प्लान बना लेती हैं कि हमें हमारे पीहर जाने का अवसर मिल जाए, लेकिन हर बार रक्षाबंधन और भाई दूज पर जाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता,
1: नहीं हो पाता।
0: अब चूंकि यहाँ है, आपका भाई वहाँ है
1: जी,
0: तो फिर क्या, कैसे करती है, कैसी तैयारियां होती है, क्या करती है?
1: हाँ, थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है राखी के पहले, तो उसकी शिकायत रहती है, इस बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, वरना रहने दो, फिर राखी भी भेजने का क्या मतलब है। कभी कभी ऐसी छोटी नोकझोंक हो जाती है, हालांकि समय को वो भी समझता है, हम भी समझते हैं। बहुत खराब लगता है कई बार रक्षाबंधन जब अकेले मनाना पड़ता है, तो सिर्फ फोन पर बात हो जाती है अच्छा लगता है, पर फिर भी एक कमी तो रहती है।
0: बिल्कुल, कमी तो रहती है, और उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज के समय में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, तो आपके लिए इंटरनेट कितना सहायक हुआ है रक्षाबंधन को मनाने में?
1: इंटरनेट तो मुझे लगता है दूसरा भाई बन गया है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम अपने भाई को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर हम सामने उसको रखकर प्रिटेंड कर सकते हैं हम राखी बांध रहे हैं, हम मिठाई खिला रहे हैं, जिसमें मैं ज्यादा खा लेती हूँ।
0: सही है।
1: और हाँ, फिर आती है गिफ्ट की बारी। वही, जैसे इंटरनेट हमारा काम आसान कर रहा है, तो भाई का काम भी आसान कर रहा है कि वो उपहार हमको इंटरनेट के थ्रू दे पा रहे हैं।
0: जी जी जी, आजकल बहुत सारे शॉपिंग एप्स है ना, पैसे भेजे जा सकते हैं, तो भाई लोग कंजूसी ना
1: नहीं कर पाते हैं, वो जानकर भी करना भी चाहे ना, तो हम बहने करने नहीं देते हैं,
0: करने नहीं देते। वाकई में आज के समय में सखी और राखी का जो स्वरूप है वो बदला है, और ये बदलाव बड़े सकारात्मक और बहुत अच्छे किस्म के बदलाव है कि हम दूरियों में भी अपनापन खोज पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: नेहा जी, आज बहुत अच्छा अवसर है, रक्षाबंधन का दिन है, आज आप हमसे बात कर रही हैं, तो इस मौके पर आप अपने भाई से क्या कहना चाहती हैं? कोई एक प्यारा सा संदेश अगर आपके पास हो तो वो आज आप यहाँ से कह सकती हैं।
1: जी, मेरा एक भाई है, मैं उसकी एक बहन हूँ, हम दोनों एक दूसरे का हमेशा से सहारा बनने की हमने कोशिश की है और बनते भी हैं। जो प्यार है वो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं, हमेशा रहता है और रहेगा भी। हमेशा बहनें, हमारी सारी सखियां, यही हम प्रार्थना और दुआ करते हैं हमारे भाइयों के लिए कि हमेशा वो सफल हों, अपने जीवन में आगे बढ़ें और जितना हो सके उतना कामयाबी को पाएं। राखी प्यार, सम्मान और समानता का प्रतीक भी है, जिसमें हम एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे हर मुसीबत, इस चीज का मैं वादा करती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: सखियो, बात आज हम आधुनिक समय में रक्षाबंधन के तौर तरीकों के बदलाव की कर रहे हैं। आज एक ऐसे विचार से रूबरू होते हैं जिसमें है समाज की चिंता और दूसरों की परवाह। जी हाँ, आज के समय की सबसे सकारात्मक पहल जिसमें ये माना जाता है, ये चाहा जाता है कि खुशियाँ हर किसी के दरवाजे पर हो, हर घर त्योहार मनाए, और इसी सोच के साथ काम कर रही हैं प्रवीणा जी, प्रवीणा अग्निहोत्री जी। तो प्रवीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: धन्यवाद शिखा जी। मैं आपके साथ साथ उन सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद और राखी की शुभकामना देना चाहूंगी जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी। हम सब राखी मनाते हैं भाई बहनों के प्यार का, उनके अटूट बंधन का, विश्वास का ये पर्व है प्रवीणा जी। लेकिन आपके रक्षाबंधन मनाने का जो तरीका है ना, वो खास है। और सखियों, ये क्यों खास है ये बताएंगी प्रवीणा जी खुद। तो प्रवीणा जी बताइए, आप अपना रक्षाबंधन किस तरह और अलग से मनाती है?
1: देखिए, राखी भाई बहनों के अटूट प्रेम का सकारात्मक पहलू है, और इस सकारात्मक पहलू को यदि हम भाई बहन, हम बोलते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो भारत में संपूर्ण देशवासी एक दूसरे के समावर्तक परिवार की तरह ही है, और हमें हमारे घर तक उस चीज को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें हम अपनापन मानते हैं, भाईचारे से हम उनसे मिलते हैं, उन तक भी ये संदेश के साथ साथ ये सकारात्मक जो हमारी सोच है, जहां तक हम पहुंच सकें वहां तक उनको उसमें जोड़ना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सखियो, मैं कह रही थी ना कि इनका मनाने का तरीका कुछ अलग है। तो यही इनकी खासियत है कि ये त्योहारों को लोगों के साथ मनाना चाहती हैं। हर घर में खुशियां आए, हर दरवाजे पर त्योहार की रौनक हो, ऐसा प्रवीणा जी चाहती हैं। तो प्रवीणा जी, मुझे इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: देखिए, 2013-14 में जब कई तरह की चाइनीज राखियां हो गई है, बहुत तरह के ऐसे उपहार जो हमारे त्योहारों पे दिए जाते हैं, उस तरह से बहुत ज्यादा ये हमारा जो अर्थ था उसको कमजोर करने की उनकी चालें जो चल रही थी, उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने भारत के लिए गिलहरी का काम करूं। तो एक छोटी सी सोच के साथ में घर पे कुछ दालें, कुछ ऐसा रखा हुआ, कुछ था नहीं ज्यादा मटेरियल, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों को लेके चलना था जो हमारे बस्तियों में बहनें काम कर रही हैं, जो हमारे घर में काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आर्थिक रूप से त्योहारों में कमियां आती थी। तो कुछ बहनें जो मेरे संपर्क में थी उनको मैंने कुछ अपने साइड से जो मेरे पास उपलब्ध थी वो सामग्री दी, और उनको बोला कि मैं बनाऊंगी तो मैं शायद 10 ही बना पाऊं, लेकिन आप लोग शुरुआत करें, हम 100-100 राखी बनाएंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत वहां से की और हमने अपने घरों में राखी बांधी। तो स्वाभाविक है, कोई अपना समय देगा तो उनको रहता है कि अगर हम ये इतना घंटे काम करेंगे दीदी तो हमारी और भी बहनें हैं, लेकिन हम उनको कैसे मदद कर सकेंगे। तब मुझे समझ में आया तो उनको कुछ राशि दी कि ये आप ये बनाएंगे तो उसकी बनवाई हम इतने आपको देंगे और इस तरह इस घंटे में आपको देनी है। हम रात को उन राखी को तैयार करते थे और सुबह रोड साइड जाके, और किसी तरह जो बहनें घर से और ज्यादा कमजोर थी, जिनके पास सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही थी, और लेकिन उनके पास हुनर बहुत अच्छा था, लोगों को अट्रैक्ट करने का, उनको अपनी चीजें समझाने का बहुत अच्छा हुनर था, तो हमने वो बनाई हुई राखी उन तक पहुंचाई। अब उन्होंने जो लोग थे उनको अच्छे तरीके से समझा के कि हमें ये क्यों खरीदनी चाहिए, हमको ये वातावरण को और हमारी जो प्रकृति है उसको सुरक्षित भी करेगी, तो जब वो उस तरह की राखी कहीं गिरेगी या हम ऐसे ही कहीं पे भी प्रवाह कर देंगे तो वो जहां पर भी रुकेगी वो एक पौधा के रूप ले लेगी और वो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के लिए भी हितकारी रहेगा और हमारा वातावरण पर्यावरण भी उससे सुरक्षित रहेगा। तो ये इस तरह से हमने शुरुआत करी, और जब इस चीज में बढ़ावा लगा, बहुत सारे लोग इसमें जब जुड़ने लगे, तो इनको आनंद महले के रूप में हमने काम किया। मेरी एक संस्था भी है समाधान परिवर्तन के लिए विकल्प, जिसमें हर प्रकार का समाधान है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी उसको अपनाए, है ना। हम कहीं से गुजर रहे हैं, हम बोलते मॉल में और यहाँ पे हम होते बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं, लेकिन उन ऑफरों से ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हम त्योहारों के जरिए सुधार करें, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का भी दायित्व है।
0: जी जी।
1: और कहीं ना कहीं हम गुजर रहे हैं और हमको दिख रहा है कि कोई मेहनत से रोड साइड छोटी सी दुकान या टेबल लगा के बैठा है, बहुत ज्यादा सुबह से कर रहा है, उनके बच्चे भी वहीं पे करते रहते हैं, तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने तरफ से कुछ ऐसी जरूरत की चीज वहां से खरीदें त्योहारों पे, और खासकर कर राखी पर, क्योंकि राखी तो भाई बहनों का त्योहार होता है।
0: जी हाँ प्रवीणा जी, राखी की खूबसूरती ना उसमें जड़ी हुई खूबसूरत चीजों से नहीं है, बल्कि उस भावना से है जिस भावना से वो बनाई गई है और जिस भावना से वो खरीदी गई है और जिस भावना से वो भाई को पहनाई जाती है। सखियो प्रवीणा जी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करती है रक्षाबंधन पर, और वो है हमारे देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हमारे सैनिकों की कलाई पर राखी बांधने का। तो प्रवीणा जी इस बारे में भी बताइए हमारी सखियों को।
1: जी हाँ जरूर, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है जो भारत के वीर सिपाही हैं, अगर उनको हम नहीं समझे या हम उनको नहीं जाने तो हम अधूरे हैं।
0: जी,
1: क्योंकि हम जितने हंस रहे हैं, जो त्योहार मना रहे हैं,
0: बिल्कुल हम महफूज हैं,
1: महफूज है वो, कहीं ना कहीं हम उन्हीं के कारण हैं। अदरवाइज हम हर तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं, हंस रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ हम राखी का त्योहार मना रहे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है। तो हम जब अपना भाई के लिए एक राखी खरीदते हैं तो हम एक राखी, दो राखी, जो हमारी श्रद्धा हो, जो हमारी जितना हम सामर्थ्य कर सकते हैं उतनी, अगर हम वहां जाकर नहीं बना सकते, हमारे आसपास

0: भी जैसे महू में है, बहुत ज्यादा हमारी जगहों पे है, हमारे भारत में कई जगह है, हम
1: जी
0: जहाँ जैसे रह रहे हैं
1: जी
0: उसके आसपास हम देखें, और अगर हम वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑफिस पे एक डब्बा होता है और वहां पे आप अपनी राखी अपनी पोस्ट के साथ उसमें डाल दीजिए,
1: जी
0: और हम उन सेनाओं के साथ प्रत्येक वर्ष उस राखी का त्योहार मनाते हैं।
1: जी जी जी क्या बात है प्रवीणा जी, आप और आप जैसी दूसरी बहनें जो सैनिकों के साथ इस त्योहार को मनाती है ना, वो उनकी कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बांधती, मैं तो ये कहूंगी कि वो बांधती है हम सबकी कृतज्ञता, हमारा हम सबका पूरे देश का प्रेम, और ये धागा ही जो है वो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं प्रवीणा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शिखा जी, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, एक बार फिर सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।

0: तो सखियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरी तरफ से हर भाई की बहन को ढेर सारी बधाइयाँ और हर बहन के भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। तो अब अनुमति दीजिए अपनी सखी शिखा साहू को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। महिला श्रोता सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा।
1: एक बजकर 30 मिनट होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रमिला सागर और आजाद सिंह यादव के गाये लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रमिला सागर और आजाद सिंह यादव के गाए लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अजुद्दी दास कबीर पंथी के गाए और साथियों के गाए नौबिदत्ता निगम के गाए सुगम संगीत के कार्यक्रम में राखी गीत लीजिए प्रस्तुत हैं। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हुए। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं। और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बज रहे हैं और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले ये गीत।

ये गाना था फिल्म याराना का, आवाज़ थी किशोर कुमार की, अनजान ने लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यकीन। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लेडीज़ टेलर में मोहम्मद रफ़ी को। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारण 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सीमा के दोनों ओर 1545 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल नदी के किनारों और अलग अलग बस्तियों में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं और बाढ़ के बहाव में बह गए शवों को निकाल रहे हैं। हालांकि भोटेकोशी नदी के उद्यम स्थल के पास बनी एक नई बांध झील को लेकर चिंता बनी हुई है। अधिकारियों को आशंका है कि बांध टूटने से पानी का एक और तेज बहाव आ सकता है। इससे आपदा और भी गंभीर हो सकती है और बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारत ने एक बड़ा बचाव और राहत अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शिशास से बात की और उन्हें भारत की पूर्ण मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व स्नेह, सम्मान, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने समाज और राष्ट्र की रक्षा तथा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लाए तथा प्रेम और आपसी विश्वास के बंधन हमेशा मजबूत रहें। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल निवास पर ब्रह्मा कुमारी बहनों से राखी बंधवाई और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को 2 फीट लंबी विशेष राखी बांधी और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया। आगरमालवा में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी, जबकि ब्राह्मण समाज ने श्रावणी उपक्रम के तहत यज्ञोपवीत धारण किया। दतिया में जेल में निरुद्ध भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। वहीं खरगोन के सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 16 वर्ग फीट की विशाल राखी बांधी गई, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र सजाए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर आज अमृतसर स्थित सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि गुरु घर आने से उनका मन अनंत ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर गया है। उन्होंने गुरु चरणों में नमन करते हुए आपसी स्नेह और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।
1: मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो गुरु घर मत्था टेकने का अवसर मिला है। मन अनंत ऊर्जा से भरा है, उमंग और उत्साह से भरा है। यहाँ कोई न छोटा है न बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, एक पिता की सब संतान है, बस एक ओंकार। और यही आपस में स्नेह और सद्भाव पैदा करता है। यहाँ सेवा का जो अद्भुत काम होता है वो हर एक के अहंकार को दूर करता है।
0: राजगढ़ जिले के ब्यौरो में भोपाल बाईपास ब्रिज पर आज सुबह बेंगलुरु पुलिस की गाड़ी और उत्तर प्रदेश की यात्री बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर और बस चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत कल शिविर विकासखंड कोलारस की ग्राम पंचायत लुकवासा में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
4: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
7: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
2: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा

0: अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं जावेद खान। और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का एक गाना जिसको गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है गांधी चौक बड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने।

भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य शिवाजी चौक राजिम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, मंजुलता, आदित्य कुमार और कृष कुमार, कृष श्रीवास्तव की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं झुक गया आसमान फिल्म में लता मंगेशकर को हंसरा जी पुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से शुद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने ये गाने की फरमाइश भेजी है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, एकांश गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से प्रणेता गायकवाड़ और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, वैशाली शैलेश गायकवाड़ आकार हाइट्स बहादुर बहादुरा नागपुर से, और सुमित गायकवाड़ और ध्वनि गायकवाड़ ने पसंद किया है। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हमराज। शाहिद लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नोपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ब्रेडी से। लिखने वाले हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन सिरद सवारे और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है धामणी मनोरा से। लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आकाश डेरे, किरण डेरे और उज्जवल डेरे। साथ में अनुत डेरे ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में एक गीत जिसको पसंद किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, और इन्होंने फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, और नेपाल पैलेस सागर से ये फरमाइश आई है। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम है शर्त।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सीमा के दोनों ओर 1545 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल नदी के किनारों और अलग थलग बस्तियों में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। देश और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल निवास पर ब्रह्म कुमारी बहनों से राखी बंधवाई और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को 2 फीट लंबी विशेष राखी बांधी और 125,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर आज अमृतसर स्थित सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि गुरु घर आने से उनका मन अनंत ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर गया है। और मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, सीधी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। और लीजिए सुनिए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और आज की युवाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00 और फिल्म संगीत 6:30 पर। सात बजकर 21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं खेल जगत कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से बातचीत। 9:45 पर फिल्म संगीत और आपकी फरमाइश लेकर हम हाजिर होंगे रात 10:00। 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज की शाम की सभा के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:00 से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी और आज हम आए हैं लेकर आपके लिए एक बहुत स्पेशल सा प्रोग्राम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने चाहने वालों के पास में हों, अपने भाई बहनों के पास में हो, और अगर नहीं हो तो फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सबसे बात कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है त्यौहार का असली मज़ा परिवार के साथ ही होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अंत में उसका उत्तर बताएंगे। तो आज का प्रश्न भी रक्षाबंधन से ही संबंधित है। आज का प्रश्न है कि रक्षाबंधन किस हिंदू महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर ढूंढ के रखिए और सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा का बंधन। पर आज इस रिश्ते का जो अर्थ है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। ये केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करने का वचन नहीं है, बल्कि भाई बहन का एक दूसरों की खुशियों में, सपनों में, मुश्किलों में, सब में साथ खड़े रहने का प्रतीक है। हमारे देश में रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं सुनने को मिलती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। इस पर्व में जुड़ी सारी प्रसिद्ध मान्यताओं में से एक सबसे खास जो कथा है वो यही है कि द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी और भाई और सबसे अच्छा मित्र होने के नाते श्री कृष्ण को रक्षाबंधन के दिन पर राखी जरूर बांधती थी। वहीं इतिहास में रानी कर्णावती और हुमायूं से जुड़ी भी कहानी है, जो अक्सर रक्षाबंधन के संदर्भ में बताई जाती है। और यही तो भारत की खूबसूरती है, हर क्षेत्र में त्योहार मनाने का अंदाज थोड़ा अलग ही होता है। कहीं पारंपरिक पूजा होती है, कहीं लोकगीत गाए जाते हैं, तो कहीं परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवानों और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। आज के समय में रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं रह गया। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, विश्वास और भावनाओं से भी मजबूत होते हैं। भाई बहन की ताकत बनता है और बहन भाई की सबसे अच्छी दोस्त, सलाहकार और कभी कभी उसकी सबसे बड़ी आलोचक भी बनती है। और यही तो है भाई बहन का रिश्ता। नोक झोंक तो जो भाई बहन के बीच में होती है उसका अपना ही मजा है। बचपन में रिमोट के लिए लड़ाई करना, मिठाई के आखिरी टुकड़े पर बहस करना, एक दूसरे की शिकायतें मम्मी पापा को लेकर जाना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वहीं छोटी छोटी लड़ाइयां सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। तो आज अगर आपकी बहन आपके पास है तो सिर्फ राखी बांधने की रस्म पूरी मत कीजिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए। और अगर भाई या बहन दूर है तो एक फोन कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों को बहुत करीब ले आती है। और इसी के साथ सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन अगर आपकी राखी तैयार है, मिठाई तैयार है, आउटफिट भी तैयार है, लेकिन भाई का गिफ्ट अभी तक तय नहीं हुआ है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए लास्ट मिनट गिफ्ट आइडियाज़। देखिए, भाई को गिफ्ट देना आसान काम नहीं है, क्योंकि जितनी भी बार भाई से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, एक ही जवाब आता है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गिफ्ट ना दो तो वही भाई 2 महीने बाद याद दिलाएगा, इस बार तो मुझे राखी पर कुछ मिला ही नहीं था। तो ये ना सुनना हो, इसी के लिए चलते हैं और ये उलझन का हम अच्छा सा सल्यूशन ढूंढ के देते हैं। सबसे पहला गिफ्ट तो हो सकता है वॉलेट या फिर कार होल्डर। जो कार्ड होल्डर होता है वो भाई के लिए एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को खुमा देते हैं या जो चीज़ें खोज नहीं पाते। तो एक कार्ड होल्डर या एक वॉलेट हमें हेल्प करता है कि जो छोटा मोटा कैश है वो संभाल के रख दिया जाए और सारे कार्ड्स एक ही जगह पर मिल जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है उसकी पसंद की चीज़। जैसे अगर आपका भाई क्रिकेट का दीवाना है या किताबें पढ़ता है या म्यूज़िक पसंद करता है, कोई ऐसी खास हॉबी है उसकी जिसका वो शौकीन है, तो उसे उसकी हॉबी से जुड़ी कोई छोटी सी चीज़ भी अगर गिफ्ट देंगे तो वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी उसके दिमाग में, क्योंकि उसे वो चीज़ करना पसंद है। जैसे मेरे भाई को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो मेरे भाई के लिए मैंने हेडफोन्स ऑर्डर किए थे कि वो जब वॉक करके आए अपने ऑफिस से अपने घर तक, तो हेडफोन्स में आराम से गाना सुन पाए। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है ग्रूमिंग या सेल्फ केयर किट। एक अच्छा सा ग्रूमिंग किट, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस, एक पर्सनल केयर हैम्पर, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और यूज़फुल गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हर बहन चाहती है एक्चुअली कि उसका भाई साफ सुथरा रहे, अच्छा दिखे और ग्रूम्ड रहे। तो राखी का त्यौहार हो और भाई बहन फोटो नहीं खिंचवाएं, अच्छे ना दिखें, ये कैसे हो सकता है? तो ग्रूमिंग किट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और चौथा जो ऑप्शन हो सकता है वो है कपड़े या फिर एक्सेसरीज। अगर आपको उसके साइज और पसंद का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, जो कि हर बहन को होना चाहिए, तो टी शर्ट, शर्ट, कैप या कोई भी स्टाइलिश एक्सेसरी भी एक बहुत बढ़िया विकल्प है। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हमने कस्टमाइज करवाया हो, जिसमें सिर्फ आपके भाई और आपकी मेमोरीज हो। एक प्यारी सी फोटो फ्रेम, एक कस्टमाइज मग, एक कस्टमाइज की चेन जिस पे उसका नाम लिखा है, या फिर कोई छोटा सा मेमोरी बॉक्स ही ले लीजिए। ये सारी चीजें पुरानी यादों को ताजा करती है, बचपन की कई अच्छे अच्छे दिनों को याद दिलाती है, जिनके कारण हम खुश हो पाते थे, जिनके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमने हमारा बचपन बहुत अच्छे से जिया है, इंजॉय किया है। तो अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, राखी का दिन तो शुरू हो गया है। ये कुछ सबसे आसान तरीके थे जो फटाफट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके भाई को खाना पीना पसंद है, तो उसके पसंद की कोई भी ट्रीट उसको दे दीजिए, जैसे कि उसकी फेवरेट मिठाई ले आइए, या फिर उसको कॉफ़ी पसंद हो तो कॉफ़ी पर ले जाइए, या फिर किसी एक रेस्टोरेंट की कोई स्पेसिफिक डिश पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तो थे सारे लास्ट मिनट गिफ्ट ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अब दोस्तों, मैंने आपको भाइयों को लास्ट मिनट पे क्या गिफ्ट देना है ये तो बता दिया, पर उन बहनों का क्या जिनका गिफ्ट अभी तक नहीं आया है? क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अपने रोज के कामों में या अपनी खराब याददाश्त के चक्कर में अपनी बहन का गिफ्ट लाना ही भूल गए होंगे। तो क्यों ना हम बहनों के गिफ्ट आइडियाज के बारे में भी बात कर लें। तो सबसे पहले जो लिस्ट में आता है वो है प्यारे से फ्लावर्स और चॉकलेट्स। फ्लावर्स और चॉकलेट एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर समय बहुत कम है, जो कि आप लोगों के पास वाकई बहुत कम है, तो उसकी पसंद की चॉकलेट ब्लिंकिट कर दीजिए और फटाफट जाकर एक अच्छा सा बुके ले आइए। ये सबसे सिंपल है, सबसे जल्दी में मिल जाएगा और आपकी बहन के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान ले आएगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है एक शानदार सा बैग, हैंड बैग हो सकता है, स्लिंग बैग हो सकता है, वॉलेट हो सकता है। अगर आपको आपकी बहन और स्टाइल का, बहन की पसंद और स्टाइल का अंदाजा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये गिफ्ट ऑप्शन बहुत यूजफुल है। इसके अलावा बहनों को सजना संवरना बहुत पसंद होता है, तो ज्वेलरी या एक्सेसरी भी एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है। एक एलिगेंट सा ब्रेसलेट ले आइए, इयररिंग्स ले आइए, हेयर एक्सेसरीज ले आइए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो खास हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही लड़कियों को बहुत खुश कर देती हैं। तो अगर आपकी बहनों को किताबें पढ़ने का भी शौक है, तो फटाफट से जाइए और एक प्यारी सी किताब ले आइए, जिसमें सेल्फ केयर हो सकती है, एक हीलिंग बुक हो सकती है, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी टेलिंग बुक हो सकती है, या कोई भी ऐसा जॉनर हो सकता है जो उसको पढ़ना पसंद हो। इसके अलावा एक चीज दोनों भाई और बहन में कॉमन है, और वो है सेल्फ केयर हैम्पर। मुझे लगता है सजना सवरना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी लुक्स का ध्यान रखना, ये सबको पसंद आता है। तो अगर आप एक हैम्पर बनवा सकते हैं जिसमें सारे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हों, साथ में सेंटेड कैंडल्स हों, तो 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी पैम्परिंग और बहुत सारी खुशियाँ, बस यही तो चाहिए बहनों को। और समय तो बहुत कम है, और एक छोटी सी चेतावनी मैं आपको दे दूं, अगर रक्षाबंधन पे आप बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे देता हूँ, जो लेना है वो ले आओ, ये वाला शॉर्टकट अगर आपने अपनाने का सोचा है, तो इसके लिए एक साफ नो है। क्योंकि ऐसे में ऐसा लगता है कि एफर्ट्स नहीं है। मेरे भाई ने मुझे देने के लिए एफर्ट्स ही नहीं लगाए, मेरे गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो अगर आपको एक एफर्ट ना दिखाने वाला या एफर्टलेस गिफ्ट ले जाना हो, तो आप कैश कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई केयर करते हैं अपनी बहन की फीलिंग्स के लिए, तो आप एक प्यारा सा गिफ्ट उसके लिए ले जाइए, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। आपकी दी हुई हर चीज़ आपकी बहन को ज़रूर पसंद आएगी। और मैंने ये भी सुना है कि थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और अपने दिल से अगर आप कुछ कहें, तो भी बहनों को बहुत अच्छा लगता है। एक थॉटफुल सा लेटर हो गया, एक थॉटफुल सा गिफ्ट मैसेज हो गया, और क्या चाहिए। राखी की डोर मजबूत रहे, नोक झोंक चलती रहे, यही तो होता है भाई बहन का प्यार। और ये जो भाई बहन का प्यार है, ये हमेशा बना रहे।

तो दोस्तों, सावन की हरियाली, बारिश की फुहार, बाजारों में सजी रंग बिरंगी राखियाँ, घरों में बनी हुई मिठाइयाँ, ये सब हमें बताती है कि आज रक्षाबंधन है। और वाकई रक्षाबंधन आते ही पूरा माहौल जैसे अपनापन से भर जाता है। ये सिर्फ कलाई पर बांधी हुई राखी नहीं है, ये सिर्फ कलाई पर राखी बांधने वाला त्यौहार नहीं है, बल्कि भाई बहन का प्यार है, विश्वास है, स्नेह है और एक दूसरे के साथ रहने का उत्सव है। उन सभी लोगों के लिए जिनके पास अपने सिबलिंग्स नहीं हैं, मुझे पता है कि आजकल के ज़माने में राखी बहुत इवॉल्व हो चुकी है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के त्यौहार तक सीमित नहीं रहा है। अगर आपके पास आपका कोई कॉलीग है जो आपका एक बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है, तो कोई हर्जा नहीं है उस कलीग के पास जाने का और उसे बोलने का कि मैं आपको मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी मेंटली हेल्प करने के लिए भी अपना भाई मानती हूँ और आपको ये रक्षाबंधन बांधना चाहती हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और मैंने देखा है कि आजकल ये जो कॉर्पोरेट लाइफ है जिसमें हम सब काम कर रहे होते हैं, इसमें ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सगे भाई बहन नहीं होते या इतने कजिन्स नहीं होते, तो वो मुंह बोले रिश्ते बनाते हैं। और वाकई जो मुंह बोले रिश्ते हैं वो कभी कभी सगे रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों को जिनके मुंह बोले भाई हैं या मुंह बोली बहनें हैं, जिनको वो राखी बांधते हैं, जिनके कारण उनका रक्षाबंधन का त्यौहार इतना अच्छे से मनता है, उन सभी लोगों को भी राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही उन लोगों का जिनका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, उन लोगों को अपने दोस्तों के साथ रक्षाबंधन स्पेंड करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप आज भी जाइए अपने दोस्तों के पास, उनके साथ राखी सेलिब्रेट कीजिए, उनसे राखी बंधवाइए और याद रखिए कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। अगर आपका भाई या बहन आपके पास नहीं है तो उन्हें फ़ोन ज़रूर कीजिए, अपनों के साथ समय बिताइए और बहुत इन्जॉय कीजिए। क्योंकि ये जो त्यौहार है ना, वो भले ही साल में एक बार आए, पर जब आते हैं तो इतनी सारी प्यारी यादें, मिठास और खुशियां लेकर आते हैं, जो पूरे साल हमें एक बहुत अच्छा चार्ज अप दे देती है कि हाँ, अब हम हमारे बाकी बचे हुए साल में जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का राखी स्पेशल प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमने शुरू में आपसे एक प्रश्न पूछा था, जो कि था कि रक्षाबंधन किस हिंदू महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो उसका उत्तर है श्रावण। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसका सही उत्तर ढूंढ के रखा होगा। और सभी को रक्षाबंधन की बधाइयाँ। खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए और रेडी हो जाइए बहुत सारे फन और इन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि अब तो त्योहारों की लड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब आएंगे गणेश जी, फिर आएंगी माता जी और फिर आएंगे दिवाली का त्यौहार। तो सभी को सारे त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी, और माधवी का आप सभी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत मैं हूं ना। इस फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: कल हो ना हो, इस उनका गीत सुनिए उदित नारायण, सोनू निगम, शंकर महादेव, साधना सरगम और सुजाता भट्टाचार्य की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ओम शांति ओम। राहत फतेह अली खान और ऋषभ शर्मा की आवाज में सुनिए इस फिल्म का गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
3: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
3: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
3: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
3: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
3: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
3: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
3: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
3: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
3: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
3: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
2: जी,
3: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
2: जी,
3: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
3: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
3: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
2: जी,
3: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
2: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
3: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है
2: जी।
3: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
2: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं
3: जी। बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
2: लेकिन अजी जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
3: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता
2: जी,
3: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
2: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए
3: जी।
2: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
2: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
3: क्या सीख विमलेश जी?
2: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता
3: जी।
2: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
3: तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
3: तीन बुद्धिमान।
4: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
5: मेरे पुत्रों।
6: जी पिताजी।
5: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
6: पिताजी।
5: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
6: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
5: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
7: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम
6: जी।
5: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
6: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
5: बेटा धीरेंद्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं
6: जी।
5: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता
6: जी। पिताजी,
5: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो
6: जी। पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
4: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया,
8: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
7: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
8: भला वो क्या? चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
7: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
4: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
6: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
7: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
9: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
6: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
4: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
6: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
9: हाँ,
7: आपका ऊंट खो गया है ना?
9: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आँख से देख नहीं पाता है ना?
10: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
6: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
10: है?
6: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
10: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
7: नहीं नहीं,
10: अरे
7: नहीं,
10: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
7: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
10: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
7: नहीं
10: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
7: वो
10: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
7: लेकिन
10: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
7: क्या
10: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
4: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
10: मुझे कुछ नहीं सुनना।
7: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
10: मगर ये निकाली मैंने अपनी तलवार। अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
4: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
10: अब तुम सब राजा के पास चलो।
11: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
12: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
13: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
11: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
13: तुम लोगों को कुछ कहना है?
14: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
13: अच्छा, तो ये बात है।
14: जी,
13: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
15: जी, महाराज।
4: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
13: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
6: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
7: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
4: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
15: खाइए खाइए लीजिए।
3: धन्यवाद।
16: फिर पूछा,
13: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
14: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
17: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहां अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
12: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
13: वाह, बहुत खूब।
16: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
13: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
17: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
13: क्या बात है?
14: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
13: अच्छा,
14: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
13: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
12: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
13: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
7: धन्यवाद महाराज।
14: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
13: मैं सचमुच चकित हूँ।
14: जी महाराज।
16: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्य निष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
3: हाँ, अरे बाबूजी, आप
4: कहाँ खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
4: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
3: जी
4: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
4: तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
4: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
4: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
4: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
5: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
6: धन्यवाद सर।
5: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
7: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
5: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
8: सर, मैं बताऊं सर।
5: हाँ, कहो।
8: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
5: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
8: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
5: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
9: हाँ, जी सर। सही बात।
5: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
3: सर मैं बताऊँ?
5: हाँ हाँ सरला तुम बताओ।
3: सर मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
5: बहुत अच्छे सरला।
3: धन्यवाद सर।
5: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
3: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
1: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
6: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
3: बिल्कुल। I'm so excited। सरला मेरी दोस्त।
6: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: धन्यवाद।
1: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए।
2: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
3: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
2: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
3: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
2: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
3: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
2: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
4: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
2: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
5: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है नागेश्वर काथा का गाया भजन।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे नागेश्वर काथा के गाए भजन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है हीरा सिंह बोरलिया के गाए मालवी लोकगीत।

लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं हीरा सिंह बोरलिया के गाए मालवी लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और मालवी लोकगीत। कलाकार हैं हीरा सिंह बोरलिया।

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे हीरा सिंह बोरलिया और के गाए मालवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को हैं, समाचार कुछ ही पलों में होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
3: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों की वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से सुनिएगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 8:15 से कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुना जा सकता है। 9:15 से चित्रगीत प्रसारित किए जाएंगे। 9:30 से सुनिएगा श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम वन भावन। 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित जसराज जी के गाए राग जोग का। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात शनिवार 29 अगस्त को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में टपक सिंचाई के बारे में बताया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से लुत्फ लीजिएगा सजाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल में। 8:30 से भी आप फिल्मी गीत सुन सकते हैं। 9 से लोक संगीत में गणपत सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत होंगे। 9:15 से सुगम संगीत में सुनिएगा राजीव शर्मा को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा हरिराम गोस्वामी महाराज के पखावज वादन का, ताल होगा रुद्र ताल। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 से सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से। 1 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2 से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी रोज की तरह संध्या 5 से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 5:45 से। रात 8:15 से कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया मैं और रात 9:15 से चित्रगीत में। शाम 6 से विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं राजीव शर्मा को। लोक संगीत में गणपत सिंह चौहान के गाए लोकगीत 7:30 से सुने जा सकते हैं। 7:30 से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 से राष्ट्रीय युवा पत्रिका और रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे कल अर्थात शनिवार 29 अगस्त को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दो दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के खाचरौद के चिरौला घाट आश्रम में पूजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर में रक्खड़ पुन्निया मेले में हिस्सा लिया और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व स्नेह, सम्मान, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने समाज और राष्ट्र की रक्षा तथा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लाए तथा प्रेम और आपसी विश्वास के बंधन हमेशा मजबूत रहें। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित चिरौला घाट आश्रम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का पुष्पाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश महान संतों और विभूतियों की तपोभूमि रहा है और संतों की भावना के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक परिवार में खुशहाली बनी रहे।
2: संत निजानंद जी आश्रम पर मैं आज आया हूँ और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको बधाई। यही ये वैसे तो हमने पूरा मालवा, पूरा प्रदेश, देश सनातन संस्कृति के ऐसी विभूतियों से इसके आलोकित आभा दुनिया परिचित होती है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस स्थान की चेतना देते हुए पूरे क्षेत्र को चैतन्य किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबको लेके चलने का जो कल्याण का भाव है, ये वेद वाक्य को अमरता के साथ धारण करते हुए हम सबके कल्याण की कामना करें।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर पंजाब के अमृतसर जिले में बाबा बकाला साहिब की पवित्र धरती पर आयोजित रक्खड़ पुन्निया मेले में सहभागिता की। उन्होंने बाबा बकाला साहिब में मत्था टेक कर गुरु तेग बहादुर जी की तपोस्थली को नमन किया। इससे पहले उन्होंने श्री दरबार साहिब में भी मत्था टेका और कहा कि सेवा का भाव व्यक्ति के अहंकार को दूर करता है। बाद में उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा।
3: मेरे पंजाब के किसान बहनों और भाइयों, अगर ये फसल बीमा योजना लागू होती तो हजारों करोड़ रुपया राहत और मुआवजे के रूप में, क्लेम के रूप में आपको मिलते। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, हमने एक न कई योजनाएं बनाई। अभी हम सस्ता यूरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में, जो बोरी 3000 में मिलती है उसको 266 रुपया में दे रहे हैं। हमने पूरे देश में कहा कि खाद के वितरण का ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये खाद सस्ता केवल किसानों को मिले, ये डाइवर्ट ना हो पाए।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अलीराजपुर जिला जेल में बहनों ने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। विदिशा जेल में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बंदियों को राखी बांधकर अपराध से दूर रहने का संकल्प दिलाया। वहीं भोपाल सेंट्रल जेल में भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ से बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और भाइयों को राखी बांधी। सतना में बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। अशोकनगर के वन स्टॉप सेंटर में कलेक्टर साकेत मालवीय ने सपत्नीक बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया, जहां बालिकाओं ने उन्हें राखी बांधी। छिंदवाड़ा, शिवपुरी, मंडला, धार, झाबुआ, बैतूल सहित सभी जिलों में रक्षाबंधन पर्व पारंपरिक उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। एम्स भोपाल में आज 9 माह के शिशु के दोनों कानों में एक साथ सफल कॉकलियर प्रत्यारोपण किया गया है। उपचार करने वाली टीम के अनुसार यह मध्य भारत में कॉकलियर प्रत्यारोपण पाने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है। समय से पहले जन्मे इस शिशु को एक माह से अधिक समय तक NICU में रखा गया था। सर्जरी में आधुनिक कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक और स्मार्ट नेव निगरानी प्रणाली का उपयोग किया गया। ऑपरेशन ENT विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर गढ़ कल्याण बहेरा ने किया। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, सीधी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। भोपाल समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक गरज चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में 42 किलोग्राम पनीर जब्त किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को मुंबई स्थित डॉ. अंबेडकर चैत्य भूमि स्मारक की यात्रा कराई जाएगी। विशेष ट्रेन 15 सितम्बर को रवाना होगी। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ कल बानमौर तहसील के भ्रमण पर रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का बिंदु की राम राम। किसान भाइयों, आपको इना कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत छे। और आज राखी को दिन आप सभी नख खूब सारी रक्षाबंधन की बधाई ना शुभकामना। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी का साथ साथ हम देखी राज की वार त्यौहार भी चली रहा है साथ में। और अपन का दो ही चीज़ ना देखनो पड़े, अपनो घर परिवार होए कि वार त्यौहार होए कि खेतीबाड़ी होए, सबका बखत बखत से अपना का वहाँ जानू भी पड़े और काम करनू भी पड़े। सभी चीज़ हमारे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्यौहार भी अपनी खेतीबाड़ी सरीका छे, बखत पर कर ही लिया और बखत से कर ही लिया तो वो त्यौहार नहीं तो फिर का ही मतलब, कई भी वो को महत्व नहीं रह जातो। राखी आज जसो कि राखी को दिन है, एक खास महत्व तो ये कि भाई ये भाई बहन को खूब पवित्र त्यौहार है। एम छे तो जो भाई बहनों को एक रिश्तो छे वो बहुत मजबूत आरू बने इना त्यौहार का साथ में। भाई इना दिन छे तो बहनों भाई का राखी बांधे। और जो ये राखी को बंधन छे, ये रक्षा सूत्र छे बहन बांधे और छे तो भाई ओकी बहन की रक्षा करे। साथ ही ये प्रेम स्नेह और एक परिवार की एकता को भी प्रतीक छे। एम छे तो सभी जन मिला खूब छे तो उत्साह का साथ में इना त्यौहार का मनाव। न बहनना भी रस्तो देख कि कंवर राखी आव, न हम मायके जावा अपना भाई का राखी बांधना। और भाई भी रस्तो देख कि आम मारी बहन आवगा राखी बांधना। तो दो ही तरफ से छे तो ये प्रेम और स्नेह एक दूसरा का लेना रहे और ये परिवार का एक दूसरा से जोड़ी का न रखे। जहाँ हम देखा कि हमारी जो बहन छे व्याह होने का बाद में विदा भी जाए, पर एक आस रह अपना मायके आने की कि वो एक ये त्यौहार जो ऐसा छे भाई दूज छे राखी छे जेम छे तो बहन भाई न से मिलज और परिवार वाला ने से मिलज। एक परिवार दूसरा परिवार से जुड़ेल रह एक लेना तो ये त्यौहार को महत्व आरू भी बढ़ी जाए। एम छे तो जैसो कि एक अगर पौराणिक अपन महत्व समझा तो कई सारी ऐसी ऐतिहासिक कथाना प्रसंग छे जेम छे तो जैसे सबसे पहला राखी कवा मने राखी सबसे पहला माता लक्ष्मी ने राजा बलि का राखी बांधी का ना मनाई थी। जेम छे तो राजा बलि ने विष्णु जी का पाताल लोक से मुक्त करियो थो। तो एका लेना भी एको महत्व मानी जाए। फिर ओका बाद में छे तो कृष्ण द्रौपदी इंद्र शची रानी दुर्गावती ने हुमायूं सिकंदर की पत्नी आना राजा पुरु इनका भी अपना भाई बहन सरीका संबंध रहा, एक दूसरा का भाई बहन बनाया और ये रक्षा सूत्र बनायो और बांधो उनका। और भाई ने जिनका भाई बनाया उनने भी एक वचन अपनों पूरो तरह से निभायो। तो ये तो एक ऐतिहासिक महत्व छे। पण देखा कि तवसी ये सब जो प्रथा चली आई रही आज तक चली रही और कई अनंत काल तक चलती रहेगा। और ये जो आज को त्यौहार छे प्रेम स्नेह रक्षा वचन सांस्कृतिक एकता को भी त्यौहार एक मान्यो गए। हम सभी एक खूब अच्छा से मनावन मिली जुली ने मनावन और छे तो एक दूसरा से जो सद्भावना ने बढ़ेल छे समाज में परिवार में इना त्यौहार नसी बनेल छे। एक लेना ये जो त्यौहार आवज सिर्फ एक त्यौहार और मौज मस्ती नहीं है, सिर्फ एक खास महत्व ये भी है कि ये एक दूसरा से जोड़ज और एक दूसरा की भावना न का समझज। एक दूसरा का छे तो सद्भावना रखते हुए एक दूसरा का प्रति प्रेम और स्नेह भी रखज। तो एक सब त्यौहार को अपनों अपनों एक अलग महत्व छे, अलग अलग समय में मनायो जाए और ये सब त्यौहार जो छे अपना का खुशी देज आनंद देज। तो आप भी आज का त्यौहार को खूब खुशी का साथ में अपनी बहन का साथ में मनाओ, अपना परिवार का साथ में मनाओ। किसान भाइयों बातचीत आरू भी करेंगे पर बखत छे संदेश न की तो सुना एक संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
0: किसान भाइयों, अपन बात करी रहा था राखी की, और राखी को अपन लोकगीत नहीं सुना आंसू कहीं हो, तो आज अपन सुना यो राखी को लोकगीत अनुसुईया बोरलिया न साथी न को गायल। तो सुना यो लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो किसान भाइयों, अभी अपन छे तो यो लोकगीत सुनो, अनुसुईया बोरलिया ना साथी ने को गायल आनंद भी आयो। और अपनी खेतीबाड़ी की बात करा तो हमारा घना सारा ऐसा किसान भाई बहन छे जो कि बहुत अपनी खेतीबाड़ी का आगे बढ़े रहा है। अभी देखो तो नया नया नवाचार भी करे, जो मैं कई कई काम करी रहा है अपनी खेतीबाड़ी में। हम उनका से जाना समझाएं कि वो किस तरह से अपनी खेतीबाड़ी करी रहा है। कोई छे तो अपनी खेतीबाड़ी का व्यावसायिक तौर पर भी करें, और कोई पारंपरिक भी करी रोज, कोई छे तो जैविक खेती करी रोज, और कोई उम्र छे तो नया जो यंत्र छे उनको उपयोग करी कर नया नया प्रयोग भी करी रहा है। तो ये सब किसान भाई बहन चाहे कि हम अपनी खेती का लाभ को धंधो बढ़ावा, उनका खूब आगे बढ़ावा, उनका से उनका फायदा भी मिला। तो आसाज हमारे एक प्रगतिशील कृषक भाई छे शरद भाई केशरे जो कि कसरावत का छे, इनका से अपनी संध्या बहन बातचीत करी, काई बातचीत करी इन काई काई खेती में कांका का काम कर सुना न जाना इनका से।

0: सभी किसान भाई बहनों का आपको बता दूं कि हम समय समय पर कई प्रकार की खेती न कराएं, और अगर खेती बदलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान भाई बहनों का लाभ मिलेगा। तो आशीष खेती छे हमारी व्यवसायिक कृषि एक बारह में हमका जानकारी देना का लेना। आज हमारा स्टूडियो में आयल छे शरद भाई केशरे जो कि एक प्रगतिशील कृषक छे और एक असावस्य छे। भाई राम राम।
1: राम राम किसान भाइयों को राम राम
0: जी। अपन सब किसान भाई बहन का व्यवसायिक कृषि काई छे कसी करी जाए एक आप जानकारी दो।
1: असो छे कि कृषि जो छे सब हम सब परिचित छे
0: बिल्कुल,
1: पर खेती जो है व्यवसाय खेती का व्यवसायीकरण जो होता है वही उसको व्यवसायिक कृषि बना देती है।
0: अच्छा।
1: जब किसान की जब सोच किसी मतलब कहें वो एक व्यापारी की तरफ जब सोचने लगता है भले वो खेती हो जो उसकी पारंपरिक खेती हो या आधुनिक खेती हो, तो किसी भी खेती को जब वो उसकी स्थिति एक व्यापारी की तरह होती है तो वो खेती जो है वो व्यवसाय खेती में कन्वर्ट हो जाती है।
0: अच्छा।
1: और कहें तो जैसे हम कहें कि एक व्यापारी जिस प्रकार सोचता है ना, उसकी वो जिस प्रकार उसकी कार्यप्रणाली होती है उसके व्यापार में, जैसे उसका लाभ हानि के बारे में सोचता है, वो उसी प्रकार अगर एक किसान भी अगर उसके खेती में अगर एक पहले ही लाभ का हानि का उसके खर्चों का अनुमान लगा ले तो वो खेती जो है वो एक व्यवसाय खेती के रूप में बदल जाएगी।
0: अच्छा। तो देखो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी तो कहा है कि किसान भाई सोचा है कि भाई अपन ने वावणी कर दी, यो लगी रोज खेत में वो लगी रोज सब लगे ही रहा, आखिर में पतो चलियो कि भाई अपन का तो ज्यादा फायदो नहीं हुए। तो अपन शुरुआत से यो ध्यान रखा कि अपन की लागत काई लगी रही, कहाँ अपन बचत करी सका और कहाँ अपन ज्यादा पैसो लगावा, और यो सब करने से अपन का लाभ कितो हुए तो जो वो व्यवसाय की तरफ जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है नहीं, आपको यो करना चाहिए
1: जी।
0: तो एक ही काई विशेषता न रुकाई छे
1: व्यवसायिक खेती जो है वो व्यवसायिक फसलों से नहीं कह सकते तो जैसे एक हम मैंने आपको जैसे अभी तुलना करी व्यापारी से, एक व्यापारी हर तरह के खर्चों का हिसाब रखता है।
0: बिल्कुल।
1: तो लाभ कमाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान अपनी लागत को कम करने पर लगाता है।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह किसान भी अपनी लागत को कम से कम करने पर ध्यान दे तो अधिक लाभ कमा सकता है। अब जो खर्चे जरूरी है वो तो करने पड़ेंगे,
0: बिल्कुल,
1: लागत कैसे कम होगी, उसके लिए किसान को चाहिए कि वो मल्टी क्रॉप या मिक्स क्रॉप की ओर आ जाए जिसमें फर्टिलाइजर सिंचाई और सबसे ज्यादा समय की बचत होगी जो अंततः बड़े लाभ की ओर कन्वर्ट हो जाएगी।
0: अच्छा। तो मल्टी क्रॉप्ट से क्या क्या अंतर है इसमें, मल्टी क्रॉप्ट में और मिक्स क्रॉप्ट में, और जैसे अपन फर्टिलाइजर जैसे डालते हैं तो उसमें अपन किस प्रकार से बचत कर सकते हैं?
1: मल्टी क्रॉप्ट जो है और

0: स्वयं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन पड़ोस की जो फसल है जो लगा रखी उसमें भी उत्पादन में आपको लाभ मिलेगा।
1: अच्छा, तो या तो बहुत अच्छी बात बताते आप ना, कि दो दो अपन फसल ले सका जो और कोई ना कोई को कहीं ना कहीं को लाभ मिल जाएगा।
0: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये होती कि जो फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं उसमें सिंचाई कर रहे हैं, और जो एक ही समय पे हमको दो फसलों का फायदा होता है। अच्छा। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और उसका फायदा ये होता है कि ये लाभ जो है, जो प्रॉफिट आएगा ना, वो निश्चित, जैसे मान लीजिए कि दो फसलें आपने लगा रही है, दो या फिर तीन लगाई है, तो उसमें होता क्या है कि एक फसल तो आपके पूरे खर्चे को मतलब उसका एडजस्टमेंट कर देती है, और दूसरी फसल हमको सूखी बच जाती है, वही हमारा लाभ है।
1: चलो, या तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। जो दो फसल लगाओगे तो एक तो अपने नकदी की जो हो जाएगी, और दूसरी से अपना हाथ चालू रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, तो फायदा की फसल तो है। जैसे और जैसे आपने बताया कि व्यवसायिक और पारंपरिक अपन जैसे खेती ने करा, और पारंपरिक अपन जैसे खेती ने करा, तो व्यवसायिक खेती से जुड़ी और कोई बात हो तो हमारा किसान भाई अपने बताओ आप।
0: पारंपरिक खेती में सिर्फ पारंपरिक खेती जो एक मन स्थिति जो बनी हुई है, जो बरसों से जो कर जा रहे हैं हम,
1: हाँ,
0: कुछ भी नया नहीं करने की सोच रहे हैं। मतलब समय के साथ अगर हम अपडेट नहीं हो रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वो हम पारंपरिक तरीके से करे जा रहे हैं। जैसे हम, जैसे अभी कई प्रकार के नई फसलें आई हुई हैं, और अगर हम उनका, हमारा रुझान उनकी ओर नहीं है,
1: हाँ,
0: कई प्रकार के यंत्र आ चुके हैं, कई मशीनीकरण हो चुका है, अगर किसान उसकी ओर न जाकर स्वतः ही जो पारंपरिक जो तरीके से बेल, अपने बेलों का उपयोग करके, और जो भी उसके, जो भी जो उसके संच होते थे उनका उपयोग करके खेती करे जा रहा है, हाँ, और उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो पारंपरिक तरीके से ही जो उसके पिताजी ने, उसके बाप दादा ने जो भी जो करते आ रहे हैं,
1: हाँ,
0: बस उसी तरीके से कर रहा है, तो उसे पारंपरिक कहेंगे। और जो समय के साथ अपडेट हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: वो व्यवसायिक की ओर बढ़ रहा है।
1: अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आधुनिक और तकनीक से जो काम करी रहा है, और आधुनिक यंत्र इतना निकल गया है, और बहुत अच्छी दवाई ना, बहुत अच्छा अपनो प्राकृतिक तरीका की दवाई ना, खाद सब कुछ आजकल व्यवस्था खूब अच्छी हुई गई। और अगर अपनो किसान भाई समझा कि वे अपन का लाभ लेनो और कुछ अच्छो नयो करने की इच्छा रखा, तो निश्चित रूप से उनकी खेती बाड़ी भी अच्छी होगी और लाभ तो निश्चित है। जैसे ही
0: बिल्कुल,
1: तो भाई हम पूछ रहे थे कि जैसे फूल ना, सब्जी ना, औषधि ना की भी फसल अपना किसान भाई भी करज।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसमें व्यवसायिक खेती में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने अभी लागत को कम करने का पर जोर दिया, इसी तरह उपज के दाम अधिक से अधिक मिले, उसके भी किसान भाइयों को सोचना चाहिए। जो फसलें, मतलब उन फसलों की ओर जाए जिनका बाजार मूल्य उनका मूल्य तय करे, ना कि बाजार उनका मूल्य तय करे, ना शासन की नीतियों पे वो मूल्य निर्धारित हो। कुल मिलाकर जैसे दलहन है, तिलहन है, अनाज है और कपास,
1: बिल्कुल,
0: इनका मूल्य जो है शासन की नीतियों पर निर्धारित होता है। लेकिन जैसे आपने बताया फूलों की खेती, सब्जियां है, औषधीय फसल है, बागवानी है, इतनी भी फसलें हैं, इनका मूल्य शासन ना निर्धारित करते हुए बाजार तय करता है। और जब बाजार जिस चीज का मूल्य तय करे ना, उसमें लाभ गुणोत्तर मिलता ही रहता है।
1: बिल्कुल, जैसे आपने बाजार तय करने की बात करी, आपको बता दूं छोटो सा उदाहरण कि टमाटर बहुत आएगा तो 20 रुपए किलो बिकी जाए, और उनकी जरा सी कम हुए तो हम 80 रुपए किलो तक टमाटर खरीदी लेवाए।

0: ₹80 किलो तक टमाटर खरीदी लेवाए।
1: किसान अगर एक बार जैसे मान लीजिए जैसे आपने बताया कि अगर उसका उसकी कीमत अगर गिर जाती है,
0: हाँ हाँ,
1: एक दौर ऐसा भी आता है जब आपूर्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है बाजार में,
0: हाँ,
1: तो उसकी कीमत गिर जाती है, तो होता है कि किसान ने ऐसी स्थिति में हताश नहीं होना चाहिए, उस चीज को निरंतर रखना चाहिए। उसमें होता है क्या है कि मतलब कि एक साल ऐसा भी आएगा जब वो उसको पूरा औसत कर देगा और वो लाभ में स्वतः ही पहुंच जाएगा। ये इसलिए जितनी सब्जियों की जो खेती होती है ना वो एवरेज के आधार पर की जाती है, उसको एक फसल से नहीं हम आंक सकते हैं। इसके लिए हमको वार्षिक 2-3 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो आप देखोगे कुल मिलाकर हम फायदे में ही रहेंगे।
0: हाँ, क्योंकि भाई महंगाई घटाई बड़ी ना दाम कम दाम आवक ज्यादा खपत ज्यादा सब कुछ बाजार

0: पर निर्धारित रह
1: जी।
0: और एक हिसाब से अपन कमे भी सकते कभी कई बार किसान ऐसा कहे भी कि इना का हमने टमाटर बोया एक पैसों नहीं मिले अब अगला बार नहीं बोवाना, पर असो नहीं करना अगली बार बोई सके हुई सके इना बार को भी ना अगला बार को पैसों उनका एक साथ मिली जाए।
1: मेरा सुझाव इसमें ये है कि जब किसी फसल की कीमत बहुत ज्यादा घट जाए ना अगली बार उसी फसल को लगाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ऐसी स्थिति में जो कहीं किसान जो है वो घबरा जाते हैं या फिर निराश हो जाते हैं और वो उसको जो है छोड़ देते हैं, और जब वो छोड़ते हैं ना तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत स्वतः बढ़ जाएगी। इसलिए जब इसी जब टमाटर की रेट गिर जाए तो अगली बार आपको टमाटर ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब वो टमाटर बाजार में जाएगा ना तो उसके भाव बहुत तेजी से आपको मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ना, वो होएगा भी कम नहीं क्योंकि लोग वसा नहीं बोगा।
1: बिल्कुल
0: जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना कि खेती करती घड़ी अपन देखा कि क्योंकि डिमांड ज्यादा है किस हिसाब से जाहिर। अरे भाई अभी तो देखो बहुत खपत है, हो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो खपत में नहीं है,
1: और खपत के पीछे सबसे बड़ा कारण जो अब जो आगे जो हमको देखने को मिलेगा वो है उसका उसको जो सुखा कर मतलब उसको जो ड्राई करके जो ड्राई फ्रूट या ड्राई वेजिटेबल
0: जी जी
1: कन्वर्ट करके जो फॉरेन में जो जो सेल हो रहा है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है
0: जी,
1: उसके कारण उसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे आलू है टमाटर है प्याज है मिर्ची है, इनको क्या इनका पाउडर शेप में इसको कन्वर्ट करके इसको विदेशों में भेजा जा रहा है, इसलिए इनकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जाएगी।
0: वो किसान भाई बहन करना चाहिए कि टमाटर अगर मान लो बहुत भी सस्ता है तो उनको फटाफट सार्स बढ़े पैकिंग हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो नुकसान की तो कोई बात नहीं है। तो किसान भाई अपनी ये खेती बाड़ी को काम सोची समझी ना, जैसा आपने बहुत अच्छा तरीका से बताया, और आप हमारा किसान भाई बहन का बताना चाहोगे?
1: किसान अगर एक स्टेप थोड़ी आगे भी चले जाए तो भी हम व्यवसाय खेती को मतलब कहें तो दुगना लाभ ले सकते हैं। हम किसान भाइयों की समस्या ये रहती है कि हम सिर्फ उसको हम इतनी मेहनत करते हैं हमारी खेती में उसको उगाने में, लेकिन जब वो उग जाती है तो हम बाजार में बेचने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। अगर हम थोड़ा अगर उसे रोक सकें या फिर उसको अगली प्रोसेस में तक अगर जैसे आपने बताया टमाटर सॉस का अगर बाजार में कीमत नहीं है और उसका अगर उसको उसका ड्राई मोड में अगर कन्वर्ट कर दें या फिर उसको सॉस बना लें या और किसी प्रकार उसका उपयोग कर लें तो इसी स्थिति में वो सेकंड प्रोसेस से जो है हमको लाभ लगभग हमारी जो हमारे जो उपज का जो लाभ है ना उससे लगभग लगभग दोगुना या तीन गुना हो सकता है।
0: बिल्कुल सही। तो भाई शरद भाई आपना हमारा स्टूडियो में आया, हमारा किसान भाई बहनों की इतनी अच्छी आपने व्यवसायिक कृषि कसी करा आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: किसान भाइयों, अभी अपन ये प्रगतिशील कृषक शरद भाई केशरे न संध्या बहन की बातचीत सुनी और ये किस तरह से खेती करी राज और करनी चाहिए जेका सी हमारी जो खेती चे वो फायदो दे और हमारी खेती सफल हो सके, ये हमने सुनियो। और अब फिर मन करी रोज की राखी कोई करूँ लोकगीत सुना, तो सुना अपन स्नेहलता भटूरे साथिनों को गायल ये लोकगीत।

तो अभी हमारे भाई बहन है ना, स्नेहलता भटोरे को गायल ये लोग की सुने हो, आनंद भी आयो। राखी त्यौहार सोचे कि हम का बहुत इंतजार रहे हमारी सभी बहन का, और हम हमारा भाई का बिल्कुल भी नहीं भूलता है। किसान भाई बहन, अभी हमारे जो सो कि खेती बाड़ी को भी काम छे वो भी जरूरी छे। अगस्त को महीनों चली रोज ना, इन्हीं वक्त में अपन देखा कि बरसात भी कहीं कहीं ज़्यादा हुई रही, कहीं कहीं कम हुई रही। पर ऐसी वक्त में अपना का थोड़ा बहुत ऐसा काम करना चाहिए, अगर जहाँ ज़्यादा बरसात हुई रही तो जल की जो निकासी छे वो उचित प्रबंधन हमको कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल भी खेत में पानी भरेल नहीं होना चाहिए। खरपतवार खूब उग गया है, जहाँ देखो ताज हरो भरो दिखाई रोज, क्योंकि अभी खरपतवार को प्रकोप ज़्यादा छे। तो हमारी जो मुख्य फसल छे उकासी हम खरपतवार बिल्कुल अलग करता रहवा, ताकि हमारी जो मुख्य फसल हमने लगाई रखी ओखा छे तो खूब अच्छो पोषण मिला और वो अच्छी बढ़ा फल फूल और अच्छो उत्पादन भी दे। ओके बाद में अपन देखा कि अगर खेत में पानी भरी गए तो जल निकासी का लेना छे तो नाड़े ने बनाई देवा, जैसी पूरी तरह छे तो पानी वहाँ से निकल जाए। ओका बाद में छे तो अपन धान की फसल लगाई रखी, मक्का की लगाई रखी है नी, एम बखत बखत सी जसो यूरिया नाइट्रोजन और छे तो एक ही जो खुराक बन देवा तो एक दूसरी खुराक देने को बखत आई गए तो यम दई देवा अपन। और छे तो पट्टी न एक भी देखता रहा।

क्योंकि अभी जो बरसात को मौसम छे इन्हीं बखत में छे तो बहुत सारा कीड़ा लगी जाए तो वो कीटनाशक कहाँ को अपन लेनु चाहिए ये भी अपना जो वैज्ञानिक भाई अपना का सलाह दे उनके अनुशंसा का हिसाब से अपन ने लेनु चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से अपनी सेंगड़ाई न की फसल छे जमा की छे तो अभी जड़ जो छे उमा मिट्टी चढ़ाने को काम अभी कर लेनु चाहिए। खरपतवार की निंदाई गुड़ाई तो अपन करा एक साथ जो अपनी माटी छे वो ऐसी हुई जानू चाहिए कि उमा जो तो हवा जाती रहे, क्योंकि माटी अगर जमी गई तो हमारी जो पौधा की जड़ न छे वो भी सड़ी सके। और एम अभी जैसा हमारा किसान भाई बहन जो शाक भाजी ने लगाना चाहे वो भी अभी लगाई सकज, जैसो गोभी छे टमाटर छे बैगन छे हरी मिर्ची एक ही रुपाई करी सकज, मूली पालक धनिया लौकी मेथी तुरई एक ही भी छे तो पौधा एक लगाई सकज और एक एक एक ही जो बेल न छे वो मेड़ पर चढ़ाई सकज। बरसाती जो कांदा आवज ओखा भी अभी लगाई सकज, वो भी लगाने को एक खास समय छे। साथ देखा कि जो कीट वगैरह लगे फंगस रोग ओके वो बचाव हम अभी करी लेवा ने अपनी फसल को सुरक्षित रखा। और किसान भाइयों आज सावन को आखिरी दिन छे, पूर्णिमा आई गई और अपन भोला बाबा का याद नहीं करा आसू कहीं हो तो सुना एकरू लोकगीत भाई राम गप्पू जी रनसोरे को गायन ने साथी ने को भोला यो लोकगीत सुना।

अभी हमारा किसान भाई बहन है ना, यो लोकगीत सुने निमाड़ी लोकगीत थो भाई राम कपूर जी रणसोरे ना साथी न को गायल। किसान भाई बहन एक साथ कार्यक्रम की बखत भी पूरी हुई रही, तो सबई नख एक बार फिर सी राखी का इस पवित्र त्यौहार की बधाई ना शुभकामना ना। आप खूब खुश रहो, इना त्यौहार का खूब खुशी खुशी मनाओ, और आप सबई नख बिंदु की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजे को हैं कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है और ग्लेशियर के पिघलने या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं?
4: देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर, और सडन आकस्मिक होती है और काफी सीवियर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में, और इसके अलावा हाई अल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं। तो इस तरह से मिलकर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बस बोलते हैं, और तीसरा भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ। तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौलीगंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषि गंगा और धौलीगंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में। तो इसी तरह की ये घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ, और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए
3: जी,
4: और आपदा से ग्रसित हुए। अभी भी काफी लोग लापता हैं, और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं। कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है, हिमाचल में भी आई है
3: जी।
4: और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई है। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, परंतु इसमें हमारी मानवीय दखलअंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं, यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है। और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है, और उसके 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता रहे।
3: ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ है, तो इसको क्या मॉनिटर करना इतना कठिन है या फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इसे जल्दी से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान अचानक से आकर पहुंचा देती है?
4: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा
3: जी,
4: कि हम आकस्मिक ऐसी तीव्र बाढ़ में क्यों फंस जाते हैं जबकि हमारे पास मौसम का तो पूर्वानुमान है, परंतु जो हाई अल्टीट्यूड के, जैसे मैंने कहा, भूस्खलन होते हैं, उनकी सही हमारे पास जानकारियां कई बार नहीं होती हैं। और ग्लेशियर बॉडी, जैसे मैंने बताया चमोली में भी ऐसा ही ग्लेशियर बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ, इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्लो फेस गिरा और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम रखते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स।
3: प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं?
4: आपने बिल्कुल सही बोला है, मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम तीन जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं,

0: जी
1: एक तो है प्रोविटेड जोन, जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है, और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है। परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविटेड जोन में ही बना दे रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे,
0: राइट
1: और नदी के बीचों बीच जो अक्षर में ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं। हम
0: जी
1: सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है, और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है। तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं, और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है।
0: जी
1: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोपवेज हैं या झूला पुल है या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया।
0: जी
1: तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं, और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना
0: जी जरूर
1: चाहूंगा, अगर
0: जरूर
1: आपने नेपाल की खबरें सुनी हैं, तो बहुत
0: जी
1: सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिनको इस लोकल फिनोमिनास का आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं, तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी घटित होता है तो जान माल का खतरा है, और ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहिए। वो पहले से तैयारी करते हैं मानसून सीजन के लिए। हमारे यहाँ जो विभाग है उनको भी पहले से मानसून के लिए तैयार किया जाता है, और पहले से रिसोर्सेज भी डेडिकेट किए जाते हैं, और पहले से प्रीपोजिशनिंग भी करते हैं हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेज की।
0: जी
1: तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है, ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तिकरण कर पाए।
0: प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई, जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने कहा, आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उसमें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को,
0: जी
1: वहाँ के लिए पूर्व तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो उसके हिसाब आप स्ट्रीम एरिया से हेल्प इजीली आ सकती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसका कटाव भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु ऊपरी क्षेत्र है जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो,
0: जी
1: जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए पहुंचा सके, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
0: प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है?
1: बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी, जैसे आपने भी बोला, काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, परंतु जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल की जो स्थिरता की परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट

0: जानकारी नहीं। हालांकि हम स्थिरता निर्धारित कर देते हैं कि स्थिर है या कम स्थिर है या एवरेज औसत स्थिरता है या अस्थिरता है, ये सारी चीजों का हमें एक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए हम जुनेशन मैपिंग करते हैं, उसके जरिए आइडिया लगा लेते हैं। परंतु किस समय इस तरह के भूस्खलन होंगे जिनसे नदियां बाधित हो सकती हैं, जिनसे ग्लोफ या लॉफ जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और लॉफ बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो बन सकती हैं और उससे फ्लैश फ्लड्स हो सकती हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है जिसके बारे में हमें और अच्छा रिलायबल क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से,
1: जी
0: और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पे समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है, जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट करें। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो, उसका फायदा तब है जब स्थानीय जो जनता है, जन
1: जी
0: समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सके।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को,
1: जी
0: जो जियो फेंस्ड है और मल्टीलिंगुअल है। तो लोकल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह की जो एप्स हैं जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है।
1: जी
0: तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कई और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही असम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लूज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके।
1: जी
0: तो इस तरह की सारी ये जो इंफॉर्मेशन है अगर सबके पास हो, और इसके अलावा अगर आप फंस जाते हो सबके बावजूद भी, तो आप डिसास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाए।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कि सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। आज सावन का वो प्यारा त्यौहार है जब कलाई पर सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक वादा बंधता है। आज बात होगी भाई बहन के उस नटखट प्यार की। शुरुआत करते हैं उस गाने से जो हर राखी पर आंखें नम कर देता है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: इस धागे में कितनी ताकत है ना, बचपन की लड़ाई, एक दूसरे की चीजें लेना, बातें नहीं करना कई कई दिन, और फिर भी हर मुश्किल में सबसे पहले एक दूसरे के लिए खड़े होना। कभी लड़ती है, कभी झगड़ती है, पर बहन ही है जो सबसे ज्यादा समझती है। राखी का ये बंधन है बड़ा अनमोल, भाई बहन का रिश्ता है सबसे खास, सबसे गोल।

सच में हजारों में एक होती है बहना। देखिए, राखी सिर्फ उपहार का त्योहार नहीं है, ये एक वादा है, मैं हूं ना का वादा। रिश्ता है जन्मों का हमारा, भरोसे का और प्यार का। चलो इसे बांधें भैया राखी के अटूट बंधन में। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, भाई चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता।

चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की पुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।

इसी वादे के साथ कि ये रेशम की डोर हमेशा मजबूत बनी रहे, इजाजत दीजिए आसिफ अली को। आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र

0: में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
3: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
4: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
2: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mail sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. and India's

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नया कानून, इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। बोल दीपक के हैं, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फरिश्ते फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

कार्यक्रम मन भावन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। आवाज है मोहम्मद रफी और साथियों की, बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कमर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, जामरूल से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानंद, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और उनके परिवार के सदस्य, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, पहरा जिला दुर्ग से पोषण पंचोड़, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया और उनके परिवार के सदस्य, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज भट्ट, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंजूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, जुनेद, अलीना, आयत और मुआज मंसूरी, मोहद बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर, रीना, मुशर्रफ, रोजूबाई, सनी बाबू, परू और समस्त तड़वी परिवार।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब सुनते हैं फिल्म बरसात की रात की कव्वाली, मन्ना डे, आशा भोसले, बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, धुन बनाई है रोशन ने। इस कव्वाली को सुनना चाहते हैं मोरटक्का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। बीड शहर से प्रकाश पागारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल। सतारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमण वाघमारे। वारणा शाहपुरा कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान। दयानंद नगर नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। बीड़ से रंजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू थोरात। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू, टुंडुन और समस्त परिवार। इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत हजारे, प्रमोद हजारे और उनके परिवार के सदस्य। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म बरसात की रात की कव्वाली।

घराना फिल्म की कव्वाली सुनिए, शमशाद बेगम, आशा भोसले, रवि और साथियों की आवाज़ में। बोल शकील बदायूनी के हैं, धुन बनाई है रवि ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कवचाले, सबिया, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, राखी, पूजा और मीनू। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डेनी पंवार और मनीष पंवार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। मूसाखेड़ी इंदौर से प्रकाश सेन, सुनीता सेन, रक्षित, कृष्णा सेन, डुग्गू सेन। सोमानी नगर इंदौर से बीआर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और सुमति। आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म घराना की ये कव्वाली।

अल हिलाल, इस फिल्म की कव्वाली सुनिए इस्माइल आज़ाद कव्वाल और साथियों की आवाज़ में। फरमाइश आप सबकी है, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, आरव, रेणुका, जिंतूर से राम रेघाटे, संगीता रेघाटे, डोंबिवली से सुभाष बोरकर, छाया बोरकर, मालेगांव से श्रीराम हजारे, सुरेखा हजारे, रिसोड़ से साकेत वसंतकर, दत्ता नगरकर, कांता भिसड़े, संगीता और जया जी जोशी, शाहजहाँपुर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मॉरिस, अकबर, मुकेश नारोलिया, मान्यता, आवेश, जानकीलाल, नियाजू भाटिया, वरुण जौलुका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी खुमेंद्र और तुषारणी मसिया, रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वजकांत और उनके साथी, चालीसगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, आरती, नीरज ठाकुर, नव्या ठाकुर, दियान ठाकुर, तुषार गोविंद, श्याम ठाकुर, मनकर्णाबाई और समस्त सूर्यवंशी परिवार, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा।

फिल्म ताजमहल की कव्वाली सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे, मीना कपूर और साथियों की आवाज़ में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, धुन बनाई है रोशन ने। इस कव्वाली को सुनना चाहते हैं उन्हेल ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया, जरूर वरूड से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर पर रजनी कानीरे और कार्तिक युवराज, भाटापारा दत्तरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमेंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश, कामिनी चौहान, मंजू चौहान और गोमती कुशवाहा, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर और ऋषिका रॉबिन, सनावत से राजकुमार बोड़ाना, यश कुमार बोड़ाना, शेख मूसा, मास्टर अशोक वर्मा, दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म चौधरी का चांद फिल्म की कव्वाली आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। बोल शकील बदायूं ने के हैं, धुन बनाई है रवि ने। इस कव्वाली को सुनना चाहते हैं नावदाखेड़ी देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय, पवन सिंह, माही, आदित्य, सार्थक और आदेश जाट। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, शोएब, सायमा, मुस्तबा, आफिया, रऊफ, शाहिद, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। धाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और वैशाली बाठे। स्वर्णबाग कॉलोनी इंदौर से आरिफ खान, फिरोज, सायरा भी, शादनावी, सादिया, शाद अजीम, सना।

बेबी सबा बनिया बारा धमतरी से रामचंद माखीजा सविता माखीजा माही पूजा शरद और उनके परिवार के सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी वीपी रंजू अशोक सुशील नीलम बीके कैलाश रमा और आरएसपुरी छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा सुहाद्रा वर्मा आयुषी और कृत वर्मा रामकृष्ण बाग कॉलोनी पाटिल मोहल्ला इंदौर से मंशू जयराम पाटिल मंजू बलिराम पाटिल सारिका नेहा संध्या गोलू तनु रावी देवांश विराट और पाटिल परिवार।

0: कर्ज कर दो।
1: इस गीत के साथ ही आज का मन भवन कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए आसिफ अली को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है पंडित जसराज का गाया राग जोग। तबले पर संगत की है उस्ताद निजामुद्दीन खान ने। हारमोनियम पर हैं रतन मोहन शर्मा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गाया राग जोग। तबले पर संगत की थी उस्ताद निज़ामुद्दीन खान ने। हारमोनियम पे थे रतन मोहन शर्मा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से

0: द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिन कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue.